0: हम सब और आठवां के ओर आ चुके हैं। चलो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य जो बताया गया है और आठवां के ओर हम बढ़ चुके हैं, तो भाई राजेंद्र जी उसके बारे में तो कुछ बताइए।
1: जी, अभी जो आठवां के बारे में संजय जी ने जानना चाहा वो है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है, शरीर और बुद्धि दोनों असमंजस हो जाते हैं।
0: ओ, जब उतना लिफ्ताइत आ जाए, यानी कि जा अफंकलक हो गया लो ना।
1: हाँ, असक्षम, मतलब सक्षमता नहीं होती है, वो हो जाता है। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके।
0: अच्छा, ये बात तो बड़ा ये थोड़ा आश्चर्य की बात हो जाए। शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: इसके बारे में मेरी सासू माँ हरदम ये बात कहती थी, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। वो हर साइत ये बात ये कहती थी कि ये जैसे करी वे वैसे ही पाई। तो बहुत अच्छा और ज्ञान भरी के बात भी है जी। बहुत बड़का संदेश है इसमें,
0: एक
2: बहुत
0: संदेश जो यहाँ मेरा व्हाट्सएप बर्ख पे बबली जी भेजे हैं। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। ये संदेश जो कि बबली जी हमें भेजे, और भाई गहार लक्ष्मी प्रसाद जो आमस्टरडाम से ये कार्यक्रम को सुनते हुए बोले कि भाई ये इतना सुंदर कार्यक्रम है, तो भाई धन्यवाद आपका और सुनते रहना, बस यही कहना चाहूंगा। हम भाई राजेंद्र जी आठवां के बाद तो नौ जरूर होना चाहिए।
1: हाँ, नौ तो जरूर होना चाहिए। नौवां है सतत क्रोधी।
0: सतत क्रोधी
1: जी, 24 घंटा क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होती है।
0: यानी कि जो व्यक्ति 24 घंटा क्रोध में रहता है और हर एक छोटा छोटा बात पे और बस अपना गुस्सा को दिखाने लगते हैं, तो ये भी 14 और मृत्यु तुल्यों में भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, हम जो ये 14 मृत्यु तुल्य के बारे में और बातचीत कर रहे हैं, और हमारे भाई राजेंद्र जी भी यहाँ उपस्थित है, हम सबके अपना संदेश जो दे रहे हैं, और शांता जी इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो सतत क्रोधी,
2: ऐसा व्यक्ति से तो दूर रहना अच्छा है।
0: आप कभी क्रोध नहीं होते?
2: मेरा स्वभाव नहीं क्रोध होने के लिए।
1: लेकिन कभी किसी के कारण क्रोध करना पड़े तो आप क्या करते हैं?
2: मैं क्रोध नहीं करती हूँ, मैं शांत से
1: तो
2: नहीं करती हूँ, नहीं आता क्रोध मुझे, नहीं आता तो मैं शांत से उसको देख कर समझ बूझ कर अपने आप में आ जाती हूँ।
0: हाँ। यानी कि क्रोध में
2: जी शांत भाव।
1: हाँ, इसलिए कि आपका नाम शांता है तो इसलिए आप शांत हो सकेगा। लेकिन अभी अगर कभी किसी से क्रोध करना भी पड़े तो बाहर से करना, अंदर से नहीं
0: ना?
1: अच्छा। बाहर रूप से।
0: चलो दसवा और रूप बता दो भाई राजेंद्र जी की। दसवा रूप जो
1: अदखानी, जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करने की धन प्राप्त करना चाहिए। मेहनत और कमाई का जो धन होता है वही प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है, और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है।
0: राजेंद्र जी
1: जी,
0: यानी कि इस बात से आप ये कहना चाहेंगे कि जो पाप व्यक्ति पाप कर्मों से और कमा करके अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं, तो परिवार वाला भी उसमें दोषी बन जाते हैं
1: जी।
0: तो ये तो भी ठीक चीज नहीं है। दोस्तों, ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम हम सब चला रहे हैं और आज का और यानी कि विषय 14 मृत्यु तुल्य है। 14 मृत्यु तुल्य और इसमें से कितने हम सब उसमें सुन करके और उसमें अपने आप को देखते हैं कि 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य है। क्योंकि कहावत है कि ये जो जिंदगी ये जीना कितना सुंदर रूप है। हम जब ये जीने का ये जीवन के जीने का तरीका सीख ले तो हम सबके जीवन कितना आराम ही आराम होगा। हमें जो अभी आपने और सुनाए जो कि दसवां था ना राजेंद्र जी?
1: जी दसवां।
0: तो दसवां में से अब हमें 11वां के ओर छलांग लगाना है।
1: जी जरूर। 11वां है तनु पोषक। तनु पोषक यानी ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्म संतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है। संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो तो ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खाने पीने में वाहनों में स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हो कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाए बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले वे मृत समान ही होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है क्योंकि यह शरीर विनाशी है नष्ट होने वाला है।
0: यानी कि जो लोग खाली सिर्फ अपने के कबूल है ओके शांता जी
2: एक हो स्त्रीलिंग
0: हाँ जो स्वार्थी होते हैं तो वो भी मृत्यु का समान होते हैं। तो भाई हमें इस बात से इस संदेश से जरूर कुछ सोचे कि क्या हम हमारे में कितना स्वार्थी तथा कितना जो एकोविश्म है उस पे और कुछ प्रकार से प्रभाव हो सके ताकि हम उससे भी और यानी कि पहचाने अपने आप में। क्योंकि ऐसा हुआ ना राजेंद्र जी, एक मेरा मित्र था और वो कह रहे थे कि हमसे एक वृतांत को सुना रहे थे। तो वृतांत जो था ऐसा हुआ कि उसका दद्दू हम लोग कहते आजाना
1: आजा।
0: तो उन्होंने कहा कि मेरा दद्दू सभी के कमरे में एक दर्पण लगाए हुए थे पर सभी के कमरे में एक छोटा छोटा सा दर्पण यानी कि दर्पण कहते हैं शीशा
2: आईना।
0: तो सभी के कमरे में छोटे छोटे था और वो दर्पण पर उन्होंने अपने कमरे में बड़ा सा और दर्पण रखे थे यानी कि जिसे अपना पूरा शरीर को और देख सकते थे। वो जो वृतांत था कि उन्होंने कहा कि अपने कमरे में बड़ा सा दर्पण रखे और ये बड़ा आसान होता है किसी और के ऊपर उंगली उठाना पर कभी अपने आप से ये प्रश्न किए हैं कि क्या जो उंगली उठाए क्या सारा गलती उसी के रहा कि या कुछ गलती मेरा था। तो कहने के तात्पर्य ये है कि जो अपने कमरे में जो उनका दद्दू ने बड़ा सा दर्पण रखे थे तो वो रोज आकर सबसे पहले वो दर्पण के सामने खड़ा होकर आंख में आंख डाल करके ये प्रश्न किया करते थे कि जो आज किया क्या सब ठीक हुआ
1: जी।
0: कभी गलती से हमसे कोई कार्य ना हो गया कि ताकि औरों को दुख पहुंचे हुए। शांता जी इसके बारे में आपका कुछ कहना है?
2: जी हाँ, यही कि कुछ कहने से पहले सोच लो कि क्या कहना है कि ऐसे ना हो कि ऐसे कुछ शब्द निकल जाए और बाद में पछताना पड़े तो बहुत दुख होगा।
0: ऐसा भी होता है कि कभी कभी गुस्सा में लोग ऐसे ऐसे शब्दों को बोल देते हैं तो ना कि सिर्फ दुख पहुंचता है पर कभी रास्ता ही लौटने का भी गुप्त हो जाता है। तो भाई राजेंद्र जी आगे 12वां की ओर हम बढ़े।
1: 12वां की ओर बढ़ते हैं। 12वां है संजय जी निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। निंदा करना मतलब पीठ पीछे बुराई करना किसी की।
0: अरे राजेंद्र जी निंदक कौन नहीं आजकल। जिसके टेलीफोन में व्हाट्सएप है तो वो निंदक नहीं है। जहाँ कोई के बरिख और यानी कि कोई संदेश सुन लेते हैं
1: जी,
0: तो बस बुराई जो होता है तो एक लोग के पास नहीं भेजते हैं, लाखों के पास।
1: तो मरे हुए समान है, इसलिए हमको निंदक नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, ज्ञान भरी चीज भेजनी चाहिए, निंदा वाली नहीं। जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है, जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत समान ही होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंधन होता है।
0: अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा बुरा बात है। अब जो लोग बेचारन सोचे कि कोई की निंद्रा सुनी और व्हाट्सएप से एकरे अरे दुई गो के तीन गो के औरों के पास खूब भेजे हैं, तो वो सब भी इसमें शामिल हो गए। भाई जोर से नहीं कहूंगा, कभी काल के हम भी तो कुछ ना कुछ भेज देते आगे, पर इस बात को सुनकर अपना गलती और देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब ज्योति का प्रकाश आपके लिए और तैयार करते हैं। आप उसमें से कुछ ना कुछ संदेश जो हम सब के लिए खोज कर रखा जाता है, उसमें से हम सब अपने आप तथा औरों के साथ बांटते हैं और कुछ ना कुछ संदेश उससे हम अपने लिए कोई प्रकार से लाभदायक हो। हमारे साथ जो देने वाले हैं भाई राजेंद्र जी, वो तो तैयार हो गया है 13वां और मृत्यु तुल्य के ओर बढ़ने के लिए। पर शांता जी भी कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ कहेंगे शांता जी आप?
2: जी जी कहूंगा, ये समय क्या बात है ना, समय तेजी से समय कहते हैं। The tijd is gratis, maar onbetaalbaar. Tijd, je kan het niet eigenen, maar wel gebruiken. Tijd, je kan het niet bewaren, maar wel goed besteden. Tijd, zodra het voorbij is, komt het nooit meer terug. Van Hindustani Radio ki sunne walo, aap sun rahe hai ki waqt कितना बलवान है, कितना महान है, वक्त के कदर करना चाहिए।
0: भाई राजेंद्र जी आगे
1: है 13वां है परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान ही माना जाता है।
0: जो भगवान में नहीं विश्वास करे
1: जी,
0: जो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है
1: जी,
0: तो यही तो है मुश्किल। कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो सोचते हैं कि हाँ हम आए हैं तो हम ही सब कुछ है। तो भाई इसमें भी वृतांत बताया गया है कि 14 मृत्यु तुल्य में उसके बारे में भी। भाई राजेंद्र जी आगे
1: 14वां
0: चतुर्दशी, हाँ उसके बारे में बताइए।
1: हाँ, जो 14वां है वो है श्रुति। श्रुति यानी संत विरोधी,
0: जो संतों से विरोध करते हैं।
1: हाँ, जो संत ग्रंथ, संतों से, ग्रंथों से, पुराणों से इनका सब विरोध करते हैं, वहां भी मृत समान ही होते हैं। श्रुत और संत ब्रेक का काम करते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं 120 की स्पीड पे और बीच में अचानक डिवाइडर आ जाए, वो ब्रेकर आ जाए तो एकदम रोकना पड़ता है, तो ऐसे ही ये लोगों के अनुसार ब्रेकर का काम करते हैं।
0: यानी कि जो हमारे संतों और ग्रंथों के यानी कि निंदक होते हैं ना
1: जी,
0: और उनके उन्हें मानते भी नहीं, तो
1: मानते
0: ये
1: भी नहीं और मानने भी नहीं देते दूसरों को,
0: यानी कि उस पे अपना वाला सुनाने के लिए और औरों को मानने से रोकते हैं
1: जी।
0: तो दोस्तों ये था 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य के बारे में जो हम सब के साथ भाई राजेंद्र जी और यानी कि अपने संदेश को बांटे। हम सब एक सुंदर सा नगमा के ओर बढ़ेंगे, सुंदर सा गीत के ओर बढ़ेंगे।
1: सुंदर सा जो गीत है उसके बोल हैं

0: राजेंद्र जी अति सुंदर गीत को रखे और जिससे हमारे भाई रूपचंद जी और बोल रहे थे कि भाई क्या कह रहे थे राजेंद्र जी?
1: हाँ, रूपचंद जी कह रहे थे कि बहुत मोए लगा गाना हमको, जो 14 प्रकार की मृत्यु है वो बहुत विशाल लगा।
0: तो यानी कि भाई रूपचंद जी समझ
1: गया, बहुत गंभीर विषय रहा बता रहे थे।
0: तो भाई एक बात और कहना चाहूंगा कि जब अपना दिन शुरू करते हैं, जब अपना दिन शुरू करते हैं, अपनी जीभ में 3 शब्द रखे, कोशिश, सच, विश्वास। यानी कि ये 3 शब्दों अपने जीभ से रखे कि आज मैं कोशिश करने वाला हूं, आज मैं सच कहने वाला हूं, आज विश्वास के लिए। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, और विश्वास भगवान में रखे तब सफलता आपके पैरों को पर
1: चूमेगी।
0: इसी बात से भाई राजेंद्र जी की हम सब 14 प्रकार के मृत्यु हम सब रखे कि 14 प्रकार के मृत्यु जो हमारे संतों मुनियों ने हम सब के लिए विचार करके और रखे हैं, तो उसी के बारे में बातचीत हुआ। आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, पर कोई कहीं और बैठे होंगे, कोई अपने घर से बैठे हैं, कोई कार में सुन रहे हैं, कोई अपने मोबाइल से सुन रहे हैं। तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो हर समय आपके लिए 2400 घंटा आपके साथ रहते हैं। इसमें जरूर ये कहना चाहूँगा कि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है। जब कोई काम कोई कार्य करे तो ये मत सोचना कि हाँ कोई प्रकार से चित्रगुप्त जान नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य साक्षी होते हैं, चंद्रमा साक्षी होते हैं, अंधेरा भी साक्षी होता है
1: जी।
0: तो हम ऐसा कार्य करें कि हमें उसे डरना नहीं चाहिए। और ये भी कहावत है कि और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। इसी दोनों अंतर को जब हम समझ जाए तो हमारे जो ज्योति का प्रकाश, जिसका हम सब ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा से भी प्रकाश हो जाए। भाई राजेंद्र जी, आप कौन सा गीत को रखे हुए हैं?
1: जो गीत रखे हैं वो है बच्चों का,
0: पर अभी उस ओर बढ़ना नहीं
1: जी,
0: क्योंकि शांता जी तैयार हो गया है कुछ कहने को।
1: जरूर जरूर शांता जी कुछ कहेंगे।
2: हाँ, यही कहूँगा, ये जो संजय जी ने कहा ना कि कोई देख रहा है, कुछ भी करो कोई भी देख रहा है, तो सबसे पहले कोई देख रहा है वो अपना आत्मा है जो देख रहा है, और उस आत्मा भी धिक्कारता है कि अगर तू कुछ बुरा काम कार्य करेगा तो वो भी धिक्कारेगा, और जो कर भी लोगे ना तो वो आपका आत्मा में शांति भी नहीं आएगा, वो हर बार आपको कोसते रहेगा, सोचते रहेगा कि क्यों किया।
0: तो भाई राजेंद्र जी
1: जी,
0: ये कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश है, हमारे बच्चों के लिए आपने क्या रखे?
1: बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रखे हैं, बोलो राम अजराम।
3: दादी दादी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, जंगल में जा तो मुझे डर लगता है।
4: स्कूल नहीं जाओगी तो होनहार कैसे बनोगी? मैं छोड़ने आती पर पैर में चोट जो लगी है।
3: नहीं, मुझे बहुत डर लगता है।
4: इसमें डरने की क्या बात है बेटा? अगर डर लगे तो अपने भाई को बुला लेना।
3: मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है।
4: अरे ये तो है तेरा भाई राम, वो जंगल में रहता है, बस उसे आवाज दो वो आएगा।

0: মাস্টার জি।
1: মাস্টার জি, ये तो जादू टोना है, बेर खत्म ही नहीं हो रहा है।
2: ये बेर कहाँ से लाई है? तो
0: मेरे जंगल वाले भाई राम ने दिया है।

0: बोले राम आजा राम, ये गीत हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए पेश की, यही सोचकर कि वो सभी को पसंद आए होंगे।
1: तो चलो ये वृतांत को सुन लेते कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब ज्योति का प्रकाश आपके लिए लेकर के यहाँ उपस्थित है। आज हमारे कार्यक्रम में भाई राजेंद्र जी, जो कि हमारे सभी सुनने वालों जिसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो गीत को आप रखेंगे, अब पता नहीं आज रख रहे हैं आप या नहीं रख रहे, पर
2: जी जरूर रखेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा, जो हमने अभी इससे पहले जो गीत सुना बच्चों का,
1: हाँ जी,
2: वो बहुत ही मधुर वाणी में रहा, बोले राम राजा राम बोले राम, बच्चों ने बहुत ही मधुर वाणी से गाना सुनाया और अपनी दादी माँ को, अपने मास्टर जी को, और इससे हमको ये संदेश मिलता है कि बच्चे मन के सच्चे, जैसे बच्चे और भगवान एक ही रूप में माने जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई दोष नहीं होता है। तो अब हम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले, कुछ लोगों ने संदेश भेजा है कि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, उनमें से कुछ लोग हैं रूपचंद जी, शिव किशन जी, पंडित गंगाराम जी, शांता जी, बैजंती माला जी, अंचला जी और देवी प्रसाद जी। तो अब हम एक सुरनाम हमारा प्यारा देश, बहुत ही अच्छा गाना है और इसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
1: राजेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ शांता जी बड़ा बेचैनी से और मिक्रोफोन की ओर देख रहा है, क्योंकि सुरनाम से कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं लोग।
0: हाँ, 18,000 किलोमीटर सुरनाम से भी वहाँ पे शर्मिला खेमाई जो है वो भी
1: आपके कार्यक्रम को सुन रहे, तो शर्मिला जी को भी बहुत से धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी प्रकार से कार्यक्रम को सुनते रहना, क्योंकि हमारे ये फाहुन हिंदुस्तानी, जो धूप है या वर्षा, गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, फाहुन हिंदुस्तानी है आपके
2: साथ।
1: तो हम सब एक भाई राजेंद्र जी
2: जी
1: चला दो
2: जी।

0: अपना अपना नाम, यानी कि जो हमारे हिंदू स्थानीय भाषा में भी और रखल है। तो भाई जी जरूर समय आने पे कभी कोई भी और कार्यक्रम में इनके बारे में चर्चा करेंगे। शांता जी, श्री नाम हमारे प्यारा देश, इस गीत को सुनकर के आपके क्या ख्याल आते हैं? का वो ख्याल आते हैं कि जो सुबह सुबह हम सब जागते थे तो जो बचे हुए खाना कल का भात, जो चावल आप कहते हैं भाई राजेंद्र जी, तो रात्रि में जो बचता था ना, तो सुबह सुबह उनका बना दिया जाता था बाका भात।
1: बाका भात
0: आपको पता क्या है?
1: जी समझी ला।
0: हाँ, तो वो बना दिया जाता था और गर्मा गर्म चाय के साथ सुबह सुबह हम लोग खा करके और स्कूल जाते थे। स्कूल जाते सवेरे सवेरे नींद आने लगता था।
1: तो बाका भात अगर सुबह खाओगे तो नींद तो लगेगी,
0: पर ऐसा होता था। और ये ख्याल आता है शांता जी, आपको शायद पता नहीं आपके पास था कि किचन जो रसोई होते थे ना
1: जी,
0: तो वो मिट्टी के होते थे।
1: हाँ।
0: और हर समय उसे लीपा जाता था गोबर से। गोबर से कैसे बनावल जाता है?
2: सप्ताह में एक बार,
0: शांता जी,
2: सप्ताह में एक बार का लीपा जाता था।
0: पर वो उसमें कुछ और मिलावल जाता है ना,
2: गाय के गोबर। हाँ, और
1: मिट्टी
0: मिट्टी
2: क्लेई ओके पेटी में से निकाल के, तो गोबर में थोड़ा सा पानी डाल के ओके मैंग करे खुमोई से, तब ओसे जाए के फिर कुकरू लिपाई, चूल्हा मट्टी वाला रहे मट्टी के चूल्हा लिपाई, सब नेचर से हो जाए।
0: तो भाई राजेंद्र जी ये ख्याल आता है, वो महक हमें अभी तलक के ख्याल है कि जो लिपा गया रसोई को और कैसे किस प्रकार से रहता था। भाई आप कौन सा गीत को चलाने वाले हैं?
1: अभी जो गीत चलेगा वो है लागे छूटे ना अब तो सनम। बहुत ही अच्छा गीत है और इसको सब लोग सुनेंगे, मोई से सुनेंगे, लागे छूटे ना।
0: हाँ, एकदम मोई से सुनेंगे।

आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश सुनने के लिए। आशा उम्मीद है हम जैसे अपना प्रोग्राम बनाए सजाए आपको पसंद आया होगा। आपके सेवक और सेविका संजय जी, राजेंद्र जी और शांता जी, धन्यवाद सुनने के लिए। और शुभ राधे आप सबको, अपना ख्याल रखना।

सुनने वालों, तो हम ये बात को जान गए कि हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाला जो यानी कि हमारे तेमा को लिखते हैं, देते हैं रत्ना जी, हमारे कार्यक्रम के यानी कि कैप्टन जो पनेल के पाछे है राजेंद्र सिंह जी, हमारे दूसरे स्टूडियो में जो भाई राजेश बदलू जी जो हम सबको सहयोग देते हैं, और शांता खेमाई जो अपने ओर से हमें सहयोग दिए है। मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही है कि अगले हफ्ता आप सुनते रहना। नमस्कार।

खेतवा के पीछे रहती थी नानी, रोज रोज गगरिया में भर लाती थी पानी। एक रोज मुझे नानी से मुलाकात हुई, मैंने नानी से मांगा एक गिलास पानी, नानी मुझे छुटकार दिया। हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, हमारे घरे शादी पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज।

से मीनी को तो होइगे तीन खेलो सब आज हमारे घर कारज परोसिन भाई नाराज न होइए हमारे घर शादी परोसिन भाई नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज न होइए हमारे घर शादी

0: सुनो लो, यहाँ जो कि रविवार के शाम है और रविवार के शाम में हम सब रेडियो में उपस्थित है, एक गीत चला रहा हूँ, एक गीत जो यूट्यूब से निकाल करके रखा हुआ हूँ। जॉनी भाई, आपको पता है ये किसका आवाज है?
1: अभी तो सुना नहीं तो आवाज कैसे होगा भैया?
0: अभी सुना नहीं तो आवाज कैसे होगा? क्यों ना हम सुनने वालों को भी सुना देते कि ये आवाज किसका है। अगर जो कोई जानत हो तो जरूर फोन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का एक कलाकार

नहीं, शांता जी का आवाज नहीं है, ये शांता जी का आवाज नहीं है। हमारे कलाकारों में एक कलाकार अभी जो हवाम में काफी दिनों से है और

0: अपना बलान बना लो मुझे बलमा। और जॉनी भाई अभी सोच में पड़ा हुआ है, एक जॉनी भाई संगीतकारों में हॉलैंड में जब देखा जाए तो आप किसको नहीं पहचानते हैं?
1: आवाज लोग को जो बोलते हैं और गीत में बहुत फर्क होता है,
0: यानी कि आवाज गीत में बदल जाता है।
1: बदल जाता है जब कोई किसी, आपको शायद मालूम होगा भाई ने, ने, भाई संजय, कितने लोग जो तुतलाते हैं,
0: कितने लोग हैं जो तुतलाते हैं,
1: तुतलाते हैं है, यानी स्तोत्र करते नहीं,
0: स्तोत्र हाँ।
1: लेकिन अब सोचो कि वो ये कैसे गाना गाएगा, लेकिन जो जो गाना गाते हैं तो एक बार नहीं स्तोत्र करते, वो गाना वो इसने चलाते। देख लिया जाए एक मशहूर कलाकार जो हमारे सूरीनाम को जो यहाँ रहते हैं गोपाल, नॉर्मल हैं गोपाल जब आपसे बातचीत करेगा तो वो स्तोत्र करते हैं, लेकिन जब वो किशोर कुमार के गाना गाते या और भी गाना गाते वो कभी एक बार स्तोत्र नहीं करते और दूसरा आवाज़ से गाते, इसीलिए गाना पे आवाज़ बदल जाता है यार।
0: पर सुनने वालों आप भी सुनिए ये किसका आवाज़ है।

0: अपना बना लो मेरा बलमा, और ये सुंदर सा गीत जो लिखा गया कि अपना बना लो मोरी बलमा, एक और गीत उसी का चलाता है, क्यों ना शायद अभी आ जाए जॉनी भाई आपके।
1: नहीं आएगा
0: नहीं, शायद धुन कुछ और होगा, देखते हैं।

दोस्तों सुनने वालों, भाई जॉनी भी आश्चर्य में पड़ गए हैं। तो इसे बता देता हूँ जॉनी भाई कि हमारे गायकों में से मशहूर गायक जो सूरीनामक है, जो सबसे ज़्यादा गाना गाए से, उनका भाई बहुत सा गाना गाए हैं। अगर जब नाम चैतू कह लूं तो उनकर बहन, कितने बहनों उसकर गीत का गाना गाए हैं।

0: सत्या चाहे तू, सत्या त्रिबेनी चाहे तू, यूट्यूब से निकाला गया ये गीत और उनकर गाए हुए गीत है। उन्होंने बड़ा मंदिरों में और बहुत सा जगह गाते रहते हैं और उन्हीं का आवाज़ में ये सुंदर गीत है। पर बिल्कुल जैसे उनसे बात करेंगे आपको तो ये आवाज़ नहीं है।
1: देखिए हर एक लोग जो गीत को गाते हैं भाई संजय, तो उसका आवाज़ बदल जाता है,
0: आवाज़ बदल जाता है,
1: वो कुछ और आवाज़ जो बात करते हैं वो आवाज़ और गीत के आवाज़ वो दो हो जाते हैं। आप भी तो कराओगे करते हैं,
0: अब कुछ कुछ वहाँ भी कोशिश कर जा सीखे के
1: भाई क्या ये फरकलाप तो भैया संजय भी कराओगे गीत गाते हैं तो उसका आवाज़ भी वहाँ पर कुछ और है। मैं कुछ बताओ भाई संजय, आपकी रामलीला के बारे में कैसे बातचीत है?
0: भाई रामलीला तो यहाँ हॉलैंड में बिल्कुल बंद हो गया था ना, ये लास्ट यार लास्ट ये अफलोपद संयम तो हो ही नहीं कुछ, और अभी यहाँ फिर स्टार्ट किया गया है। और जैसे कि सूरीनाम में अभी भी सूरीनाम भी कम हो गया है, पर भारत में जो नवरात्रि से पहले तो जनवरी में शुरू हो जाता रिहर्सल करने लगते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पहला नवरात्रि में जो मार्च अप्रैल में होता है तो वहाँ पर सभन अपना नौ रोज के लिए अपने हर एक स्थानों पे, दिल्ली में हर एक स्थान पे और जा कर के रामलीला होता है। और ख़ास करके त्वेदा रामलीला जो जहाँ पर का बोले है दशहरा होता है, जहाँ पर रावण का और पुतला बना करके जलाया जाता है, तो वो तो हॉलैंड में वो नौ दिन तक यहाँ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर अगर हम लोग सोचेंगे कि मुश्किल हो गया है तो मैं इस पे नहीं मानता हूँ, मैं इस पे नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम कुछ लोग भी इस समय सुन रहे हैं हम लोग के साथ, और मैं ये आशा रखता हूँ कि जिस देश में जॉनी सुरजबाली है वहाँ तो रामलीला ही करवाई के रखेगा
1: पंडित साथ है लेकिन भाई संजय ने एक बात और है, सूरीनाम में तो चलते हैं नौ रोज चलते हैं वहाँ रामलीला, और भारत में कैसे है वहाँ?
0: भारत में हर देखो अब जहाँ मेरा परिवार रहते हैं ना दिल्ली में, तो वहाँ पर अब दशहरा वाला जो दूसरा नवरात्रि है वहाँ पर तो ये जूनी मई में गर्मी होता है, तो जूनी में गर्मी अभी होता है और जुलाई में तो बरसात आ जाता है। जब बरसात आ जाता है तो गर्मी जो कट करके 40 से ऊपर रहता है और हो जाता है 32-35, धीरे धीरे अगस्त तक गर्मी और थोड़ा 30 तक पहुंच जाता है, और जुलाई के बाद में वहाँ रिहर्सल शुरू हो जाता है, सब अपना ओपनिंग शुरू करने लगते हैं। और ख़ास करके जहाँ हमारे परिवार रहते हैं वहाँ छत पे,
1: और छत पे होता है
0: हाँ दुस्सैन
1: ओपनिंग होता है
0: हाँ डाक पे, और लोग आ करके रिहर्सल करते हैं खूब। वहाँ मैंने बैठा था और मैं सुन रहा था बातचीत हो रहा कि भीड़ भाड़, वैसे तो उतना भीड़ भाड़ नहीं, तो इस बात को पता चला कि वहाँ आप रामलीला का रिया जो हर साल करते हैं फिर भी हाँ, और ये है कि एक ही आदमी नहीं उसमें, वो है कि उसमें है कि दत्तर दो लोग पे जो इस साल हाँ इस साल नहीं खेले उसे मौका मिला तो अगले साल मिलेगा, और उसमें एक दूसरे को जोश देते हैं।
1: लेकिन वहाँ पर सब कहाँ खेलते हैं?
0: यहाँ वहाँ जो अपना परिवार है, क्योंकि वहाँ दिल्ली में एक रामलीला मैदान कहते हैं अनहेल ओप प्लेक, जहाँ पर यहाँ के लोग भी जा करके वहाँ पर सम्मान को प्राप्त किए हैं कि यहाँ जो भाई बालादीन लोग जो नाटक आदि खेले हैं और वहाँ पर जा करके क्या कहते हैं सम्मान को प्राप्त भी किए वहाँ पर, सम्मान खूब सम्मान किए है हॉलैंड से, क्योंकि भारत ये चाहते हैं कि हमारा सभ्यता संस्कृति और संस्कार ये बढ़ते जाए। अब देखा जाए मोदी जी आए हॉलैंड में तो सब बात सबको नहीं पता है, पर कुछ बातें हैं कि जो हम लोग सुन लेला कि हम लोग के हिंदी स्कूल जो यहाँ पर है पांच गो सनातन धर्म स्कूल और फाहोन के लेकर के छः और शोन और फाहोन भी, तो वो इतना प्रशंसा हो रहा कि हॉलैंड में हो करके और ये सब कार्य को करते हैं इट्स ट्रोट्स हमारे हिंदुत्व के लिए
1: क्रोट,
0: और वो विष्णु स्कूल के और प्रस्थान डाले पर कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल होने के कारण मीडिया में ना आवे सब और इसी प्रकार से अभी जब गुलनी हेलमाल अफवाई का फन जो प्रश्न रखे आपकी हम रामलीला क्या करते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग रामलीला खेलने वाले हैं जो अगले 5 जून आ रहा है तो कोनिंग कसौबर में यहाँ हम लोग को अवसर मिला है तो वहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम होगा, तो ऐसा है कि वहाँ कुछ कार्यक्रम एर्स्ट खदेलता जो खराता से तो इधर खदेलता में जो जिसके खाने पीने के साथ तो कुछ एंट्री भी लगेगा
1: जरूर लगेगा,
0: पर ख़ास करके हम लोग के अति संविश्वंद रहे दच हम लोग की हम अपना कार्यक्रम कौन इंकल कस्खाओबेरख में देख सकते हैं, तो खूब मन तन से काम किया जाए और हमारे जो कलाकारे हैं फाहोन स्कूल से जुड़े हुए वो लोग भी दिखाएंगे कि उसमें रामायण बहुत बड़का महासागर एक ग्रंथ है जो हम लोग के कितने ग्रंथ है पर महासागर है और उसमें से एक छोटा सा झलक हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे।
1: अच्छा भाई ने एक और सवाल है, आप तो यानी कि बखलाइदर हुए और सब करते हैं, मुझे एक डायलॉग सुना दो, आप तो सबके डायलॉग जानते हैं सबके, एक जबरदस्त डायलॉग आपके जो रामायण में है या मतलब कि रामलीला में है आप हमें और हमारे जनता तक ही सुना दो।
0: उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा दिलचस्प लगता है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं वो टुकड़ा रामलीला का जिसमें हमारा लक्ष्य ये है कि राम और सीता का धनुष यज्ञ से उनका और कैसे सीता को प्राप्त किया उसमें ये संदेश रखा जाता है कि हमारे बच्चों ओंस केंद्र वे इतफाक ओंस द फरहाल फन ओंसनी और वे खान फाक साम वो उन क्या कहते हैं बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद में हम चाहते हैं कि अपने बच्चा का मुड़न संस्कार जरूर कराए, पर कुछ चीज है जो हमारे धर्म से जैसे कि भी हमने कहा कि सभ्यता संस्कृति और संस्कार इन तीनों चीजों पर पहले हमारे सखमार जो भारत को अख्तिंद्रिय सैफन तक में छोड़ करके और भारत से गए सूरीनाम, तो सूरीनाम में जा करके संस्कार को पकड़े रहे पहले और जा करके विवाह भी होते थे एक दूसरे के साथ तो जिसे हम जानते ब्रह्म विवाह से और वत ओंस जो हम लोग का संदेश है ये धनुष यज्ञ से कि संदेश ये हम लोग रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों हमारे कहानी जाने अपना जो फ्रिंट या फ्रिंदेन को जब वो वनेरत सो फेर इस दन बोव्यस किस्त फनो हमारा विवाह होई और हमारा विवाह किस प्रकार से होई ब्रह्म विवाह होने से लव कुश जैसा पुत्र को जन्म होता है और उसी कारण सिटफेल अख्तर है मुद्नित खान खलाइक ऑफ द नाम में हमारा धर्म भी रहेगा, धर्म रहेगा इस कारण कि हमारा धर्म में हम लोग के कोई भी कार हम लोग के जो कुछ संस्कार है 16 संस्कार है तो 16 संस्कार में सब देखा जाए कि चार को पे हम लोग ज्यादा ध्यान देला, पहला वाला है जो मुड़न संस्कार, जबकि अभी तक हॉलैंड में हम लोगन गोरे लोग जो गर्भधान संस्कार ये सब कराते हैं
1: कराते रहे
0: अभी तक।
1: अच्छा
0: वही माँ कनत नहीं, पर हम लोग हिंदुस्तानी उस पर ध्यान नहीं देते
1: नहीं,
0: और गर्भधान संस्कार उसके बाद में और भी करण संस्कार सब कान छेदाई वाला संस्कार सब हुए हैं, जनेऊ संस्कार विवाह संस्कार और लास्ट वाला संस्कार हुए हैं जब हमारा वो हाँ, पर फाक वो वाला जाना वाला तब बड़ा देर हो जाए जब हम अपना जीवन में सोचते हम जीवन को समझ लिए, पर जब समझने को आने लगता है तब जाने का वक्त हो जाता
1: है, करना है हाँ,
0: तो दौरो खोजो पंडित।
1: लेकिन और एक डायलॉग सुनाते हैं
0: अब भाई, आप वही में से हम घुमा रहे थे आपको, पर फिर आप हमें लेकर उसी ओर ले जा रहे हैं। उसमें से एक डायलॉग नहीं, एक एक, एक एक एक खदेलते जो हमें बहुत पसंद है।
1: अच्छा सुना दो।
0: जहां पर परशुराम जी जो जा करके जब धनुष को टूट जाता है तो वो अंदर आते हैं बड़ा क्रोधित होकर के, मैं क्रोधी हूं परशुराम के आवास, और परशुराम के आवास में आते हैं, और आप नाटक रामलीला वाला आदमी हो
1: नहीं, नहीं।
0: आप वो करवाना चाहते हो, मुझ में वो है ही नहीं,
1: नहीं
0: पर परशुराम बड़ा क्रोधित होकर के आता कि किसने ये धनुष को, किसने ये दुशासन किया है, ये धनुष जो शिव का धनुष है किसने तोड़ा है। तो उसमें बड़ा टड़क भड़क दिखाते हैं राजा जनक जी जो अपने ओर से कहते कि ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी है, और लेकर के अयोध्या सुपुत्र राम लक्ष्मण को लेकर के यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं।
1: तो लक्ष्मण भी कुछ बोला था,
0: तो लक्ष्मण भी
1: तो
0: अपना
1: कौन से डायलॉग बोला था,
0: लक्ष्मण कहते कि कि बड़ा आप में बचपन में तो मैंने ऐसा ऐसा कितने सारे और धनुष को तोड़ दिए, तब आप नहीं आए थे तो आज क्यों आए, और इस प्रकार से छोटा छोटा बातें हैं। पर सबसे मूल्य हमें सबसे अच्छा लगता है इसमें से, जब ब्रह्म ऋषि जी जो उसे राम को आदेश देते हैं कि जाओ और भगवान परशुराम को प्रणाम करो, तो राम जा करके भगवान परशुराम को प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं, तब परशुराम जी कहते हैं कि अरे वाह, मीठी मीठी बातों करके और मुझे भी अपमान भी कर रहे हैं, तो ये अब मैं भी थोड़ा गर्म होने लगा
1: हाँ।
0: पर काफी इतना
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: कि संदेश बड़ा अच्छा लगता है वो,
1: अच्छा, जरूर, जरूर।
0: और देखने वाला चीज है।
1: देखो जब रामायण चलते या महाभारत चलता है जो लोग जानते हैं और उसके बारे में आप बताते हैं तो सब
0: हाँ
1: रामायणर होता है,
0: तुरुख ब्लिक
1: तुरुख तुरुख हाँ। वहाँ ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था, कारण कि जो इतिहास है पंडित जी भाई संजय, इतिहास लोग बदल नहीं सकता।
0: हाँ पर ये हमारे कथाएं जो है ना
1: वो बदला नहीं सकता,
0: हाँ पर वो ऐतिहासिक रकम से शायद लिखा हुआ है पर इतिहास नहीं है, अतः जीती जागता कथा
1: कथा और उसको और बदल नहीं पाएगा।
0: हाँ उसमें बदलाव नहीं आएगा कभी,
1: क्योंकि एक नाटक जो हम सब लिखते हैं या एक फिल्म बनाते हैं या एक गीत को हम गाते हैं भजन छोड़ाकर, तो उसमें आप कहीं पे थोड़ा सा लहसुन डाल देते हैं, कहीं प्याज डाल देते हैं, कहीं मसाला डाल देते हैं, कहीं मिर्चा डाल सकते हैं, लेकिन जो इतिहास है जो हमारा वेद के है या कोई भजन के गीत है उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, जो है आपको वही बताना पड़ेगा।
0: शायद धुन उसमें कुछ बदल सकता है, आवाज किसी का बदल सकता है, पर संदेश वही,
1: संदेश आप बदल नहीं सकते हैं। हम सब जो कीर्तन भजन करते हैं तो एक एक भजन भजन होता है, बीते हुए दिनों में हमने गए थे रुद्राश रुद्रान कैसे है रुद्र मंदिर में,
0: रुद्रधाम,
1: रुद्रधाम में वहाँ पर हमने शिव चालीसा को गाए, जब शिव चालीसा हमने गाए तो उसके बाद में अब वहाँ कथा होने लगा, तो एक एक स्वामी जी व्यास पर बैठे थे तो वही शिव चालीसा के कुछ कथाओं बताने लगा, तो जो जो वोर्थ स्वामी जी बताने लगा वो सब वोर्थ वो शिव चालीसा में मुझे मिला कि देखो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। कारण कि हर एक भजन में, हर एक गीत में जो जो जो इतिहास का है वो सब में बहुत वजन है भाई। और जो नहीं समझेंगे तो सोते तो होने
0: गीत है,
1: ये गीत है,
0: पर उसमें से जो गहराई है, हाँ। जो उसमें
1: हाँ।
0: क्या कहते उसमें से जो निकालते हो, देखो कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु बिना तो कुछ नहीं,
1: कुछ नहीं।
0: तो गुरु जब संदेश उसी में से इतना गहराई निकाल ली एक ही, अब जैसे आप कहे कि शिव चालीसा, शिव चालीसा में से एक ओर से संत, क्योंकि स्वामी ऐसा ही नहीं बन जाता, टीका ऐसा ही नहीं लग जाता,
1: नहीं, नहीं।
0: जरूर कुछ है, कुछ लोग है जो ऐसा ऐसा आदमी नहीं जाएंगे, पर संत मुनियों जो अपना दृष्टि डालते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा सुंदरता मिलता
1: है,
0: बड़ा
1: है, बहुत गहराई है, बहुत
0: आनंद उसी से हम
1: प्राप्त बहुत, बहुत। आप बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो और उसका अंत नहीं भाई,
0: ना
1: अब हनुमान चालीसा जब हम सब गाते हैं भजन कीर्तन के, तो हनुमान चालीसा में हर एक वर्ड जो है हनुमान जी के बहुत मूल्य है कि वो क्या क्या किया है, छोटे से लेकर जन्म से लेकर कहाँ तक वो गया, उसका 40 लीला उसमें बताए गए हैं, उसके गहराई बहुत। कितने लोग जो हनुमान चालीसा गाते हैं ऐ तो थोक जाते हैं, लेकिन उसके गहराई में कभी जाओ तो देखो उसमें क्या क्या हनुमान जी किया,
0: वर्णन किया,
1: वर्णन किया। अच्छा ठीक है, तो कुछ हो गया है हम सबका आज रामायण के बारे में। आप बताओ रामायण तो आप रामलीला तो आप करते हैं और आगे के प्रोग्राम क्या करेंगे, उसके बड़ंटी तो होना चाहिए ना।
0: नहीं बात ये है कि देखो भाई अब शायद ये बात लाइव हम लोग को करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोस्तराफ से भी जो सुन रहे हैं, और इस पे जरूर मैं ये धरना चाहता हूँ कि कहीं भी जाओ रामलीला का बात होए तो उसमें से सबसे पहले हुए है कि जॉनी के का हाल है, जॉनी का करे है शायद। तब इसमें अब ये सवाल ही आप किए तो, और ये मत समझना कि ये हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, पर ये मेरा बात नहीं है। अब पिछले शुक्रवार को हम लोग यहाँ उपस्थित थे तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे कि हम और हैन जो हमारा टेक्नीशियन है बार बार एक ही ओर आपके घींच के ले जा रहे थे, और आप हम लोग से छोड़ छोड़ करके दूसरा ओर निकल रहे थे, पर नहीं पर हमारे
1: बात नहीं करूं घुमा फिरा कर तो ही के लपेटे। संजय भाई बताओ फाहुन क्या क्या करते हैं इसमें,
0: फाहुन रेडियो के बात बोल रहे हैं या फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इस समय जो देखो आप सुबह से आज रेडियो लगे हुए हैं, फाहुन जो हमारे कोलेई खास उसमें से मुझे कभी कभी कुछ वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को सबसे यंगस्टर कहलाता हूँ, तो उसे सबसे अच्छा लगता है बस वही बार। पर हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और देखो फाहुन रेडियो का करो का ग्रुप जो है अभी एक बार लाइफ नहीं आया, इस पे काम करना है, और सब इंस्ट्रूमेंट जो हो चुके हैं स्टूडियो के जो करो का लाइफ लाना है, पर हमारे जो सभापति है करो का ग्रुप का भाई गंगा जी जो रविवार को अभी आने वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि आज सुरेन जी जो
1: आज
0: हाँ तो अभी आने वाले, पर उनके ओर से मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे कि कौन कौन आ रहा है, और फुल हर बार फुल होते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को यहाँ हमारे समय पे जो हमारा ज्योति का प्रकाश के समय पे स्टूडियो बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरा और स्टूडियो में हमारे सभी को कलाकारों जो करो को करते हैं। दूसरा बात ये है कि हमारे देखो हम लोग में ये है, जितना हमारे कोलेखा से सब कुछ न कुछ और करते हैं हम लोग। कैसे बोले, दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक इनर लोग होते हैं जो सिर्फ अपना परिवार, अपना घर में अपना सब कुछ बढ़िया से चलाते हैं, जाते हैं नौकरी पे, वो फिर वापस आकर के अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे को साइकिल में हवा भरते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने सिर्फ उसके लिए जीते। पर ये फाहन वाला को अवतर कहते हैं, ये अपने लिए नहीं जीते हैं, ये जीते हैं औरों के लिए, उसमें मजा लेते हैं उसमें। अब देखा जाए जॉनी सुरजवाली के जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, पर खोलांत में कई मंदिर में जो भजन गाते हैं, ना कि भजन सिर्फ कहां खरोता अक्तिफिताइत होते हैं, तो आप जब वहां ना हो तो थोड़ा अधूरा पड़ जाए। अब देखा जाए अमारा में पिछले साल जो 8,000 लोगों, 8,000 हिंदुस्तानी जो वहां पर आए, और उसमें आपके कार्यक्रम कितना सुंदर रहा
1: भैया, अरुण
0: ब्रिजमोहन का कार्यक्रम रहा,
1: कार्यक्रम रहा, सब कोई मिलजुल के किया। आप भी बहुत काम किया है।
0: नहीं, हम लोग भी अपना काम करते, पर कहते कहने की हम लोग सब कोई कुछ ना कुछ में लगा
1: लगा, अपने अपने अपने अपने काम सब किया है। और ऊपर में जो मंदिर आप लोग बनाए थे अमारा में, वो तो हमने देख के दंग हो गया भाई, वो जो उतना बड़ा शिवलिंग थे।
0: हाँ ना,
1: आप सौक पहिर के सौक में कोसू में और पूरा अमारा आपने चल कर और छान दिए।
0: अरे बस
1: साथे
0: बस,
1: साथ
0: मस्ती मस्ती होता,
1: साथे साथ शंकर भगवान के विवाह के भी कार्य आप बना दिए।
0: हाँ, बस हो जाता है,
1: आप बहुत महान है भाई।
0: नहीं नहीं, हमें नहीं, पर जो होना देखा जाए, पिछले साल हम लोगों ने, अब आप भी थे वहां, कि दिवाली का कार्यक्रम पौलकुरी को लान पे, भाई हेमंत लक्ष्मण का कार्यक्रम, तो उन्होंने भी देखा जाए कि खूब मन तन से कितना बढ़िया कार्यक्रम बनाए, और जा करके वहां हम लोग भी सहयोग दिए खूब मन तन से। और ऐसे हम लोग के हिंदू का कार्यक्रम कहीं ना कहीं देश में पिछले साल, देखो आप तो उस समय सूरीनाम में थे, पर सभी ये आशा रखते थे कि आप यहाँ होते, दमेरन में मूर्ति स्थापना हुआ, 5 रोज का यज्ञ,
1: जानते हैं उस समय हम सूरीनाम में रहे, वहाँ से हमने लाइव देखा आपको।
0: हाँ,
1: और मंदिर को कैसे वहाँ कारोबार होता है,
0: तो देखो हम लोग ने
1: कितने रोज के प्रोग्राम, वहाँ 4-5 रोज चला था ना,
0: 5 रोज का यज्ञ था,
1: यज्ञ वहाँ में बुलाए थे भैया हैंक फोर्स इधर, वो चाहते थे कि जो दिन स्थापना है वहाँ पर हमें कीर्तन करी, मैं क्या करूँ, ये दो जहाँ तो नहीं जा सकते भाई, लेकिन अब आने वाला अब साल में हम सब लोग को बता देते हैं कि राजू फाहुन के फाहन रेडियो, फाहन जो रेडियो चलते हैं, हम सब अपका रूह का खुर बना लिए हैं, और अब हम सब बनाएंगे चौथा ग्रुप टीम फाहन का। तो आने वाला साल में होगा भाई संजय के साथ में, हो सकते शायद कृष्ण मंदिर के साथ में,
0: नहीं वो बात भी हो गया, आज हुआ सभापति से कृष्ण मंदिर से, मैंने उसके कानों में डाल दिया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि भाई बाबू जो सभापति है वहाँ का, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम तो सहमत है, और हम वो तो और भी कुछ करना चाहते हैं,
1: ठीक है,
0: पर अभी उसके बारे में बातचीत होगा क्योंकि
1: अभी बहुत फ्रूह।
0: हाँ,
1: तो अब आने वाला साल में, बीते हुए साल में तो हम सूरीनाम देश में थे, यानी इस साल में जब सूरीनाम में थे, तो यही आशा है जब भगवान चाहेगा तंदुरुस्ती ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो अब की होली हम जोर तोर से मनाएंगे, और चौताल ग्रुप भी हम सब सिद्धि करेंगे, आप भी हैं और गंगा भैया है फाहौन चौताल ग्रुप, साथ ही साथ होलका भी जलेंगे, और जनता को अल्फाज कान में हमने डाल दिया कि तैयार रखना।
0: हाँ, पर ठंडा होगा ना
1: भाई, यार बोले जहाँ बसे वहीं सुंदर देसू,
0: और मिर्च और यास पहन लो तो बस
1: सब हो जाएगा,
0: तो कई दिन में जलावल जाइए खूब मन तन से, और इसमें थोड़ा से मैं और डाल देना चाहता हूँ कि मेयर दान फेयर तक यार से वो फॉरगिविंग को मांगा जाता है और मिलता है भी सरकार। अभी पिछले साल ये फॉरगिविंग हमने मांग किए तो थोड़ा देर से हो गया था, तो जो फॉरगिविंग देते हैं तो वो कहा कि ये तो हर साल ना मांगता है। कहने के तात्पर्य ये वो जानते हैं कि भी ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, अभी हम लोग चला रहे तो अब से अगले साल कुछ ज्यादा तादाद में वहां पर ठंडा में खड़ा होकर के और कुछ व्यवस्था करेंगे कई दिन में। और ये जो भाई महेंद्र गुदर के रखा हुआ उनकर मामा लोग के, शुरू शुरू में तो ये कार्यक्रम होता था मालीफेल्ड पे, तो फिर उसके बाद में दिया गया कैकडॉइन और तभी से 40 साल से ज्यादा हो गया है कैकडॉइन का जो कार्यक्रम होता है। तो अगले साल खूब जोर
1: से टेंट भी हम सब रख सकते हैं,
0: नहीं टेंट तो रखना पड़ेगा क्योंकि टेंट का भी व्यवस्था करना पड़ेगा।
1: तो देखो क्या होगा और सुनते हैं कि अच्छा चलेंगे। और आप भी अब देखो मंदिर में भी बतिया चुका है और अब देखो नवंबर से हम सब शुरू करेंगे यानी कि ओपनिंग।
0: पर उस और जरूर वो तो नवंबर से शुरू करेंगे,
1: नवंबर से शुरू करेंगे।
0: पर आप ये जवाब नहीं देते जॉनी भाई कि आप रामलीला के क्या करा रहे हैं।
1: वो आपके क्षेत्र पंडित जी।
0: नहीं नहीं हम लोग तो काम करना चाहता है क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जहां पर आप जो उसमें हाथ धर देंगे तो वो हो जाएगा।
1: भाई संजय रामलीला जो है जरूर चलाना चाहिए लेकिन काम बहुत बड़ा है, उसमें एक दो आदमी का संयोग से नहीं हो पाएगा। अगर ये बड़ा हम करना चाहते हैं जैसे सूरीनाम में लोग करते हैं फेल्थ पे करना चाहते हैं या कोई बड़ा साल में करना चाहते हैं बड़का हॉल में, तब ये बात जानो कि पूरा पूरा हॉलैंड के लोग आएंगे, ओनाक्सी सिर्फ दनहा के लोग आएंगे। आप करते हैं आपको तियातर भर जाते हैं लेकिन जब और बड़ा हम करेंगे दो हफ्ता चलेंगे शुक्र शनिचर अतवार और हर उम्र में करना पड़ेगा। कारण कि जब बाहर आप रामलीला करेंगे जैसे सूरीनाम में या भारत देश में लोग करते हैं तो गर्मी चाहिए, फल चाहिए, कपड़ा चाहिए, डेकोरासी चाहिए, काम बड़ा। ओम दिल अलमाल तहरियाली शेर मुँह तो खुद और खालिस्तान से पाकिस्तान, यानी कि आप जानते हैं काम बांटना पड़ेगा, काम नहीं बांटेगा तो काम नहीं होगा। अल अफदीलिंग मुचिया फरदील कि तुम्हारा क्षेत्र ये तुम्हारा है, तो 10 लोग को आप जब काम बांट देना तो काम हल्का हो जाएगा। एक दो आदमी हो परसों अंदर मुचिया फरदील तब हो पाएगा भाई। और जो सी आदमी चाहिए ना कि जैसे 7 बजे स्प्रा करे तो 9 बजे आए नहीं ऐमें करे, आप तो जानते हैं वो लोग भी होता है। तो ये सब बांध बहुत लंबा है बड़ा है भाई, इसके बारे में जो अगर करना है तो मिलजुल के हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, जब भगवान चाहते हैं जनता के आशीर्वाद है लोग चाहते तो हो सकता है, लेकिन इसका और खानिशान सी जबर होना चाहिए।
0: जरूर और खान साहसी जबड़ होना चाहिए, बगैर और खान साहसी कुछ नहीं हो पाता। पर छोटा सा छोटे मुंह बड़े बात, छोटा सा एक ही व्यक्ति और शुरू किया तो 8,000 लोग को अमार में धल दिया। तो कहने के तात्पर्य यह है हम लोग का अक्तिफिताई था जो मिलन होता है साल में सैन इन द मोय पेरियोड, और जरूर शायद हम लोग जो नवरात्रि होना चाहिए रामलीला होना चाहिए दूसरा नवरात्रि से पहले, पर वो ठंडा समय है पब्लिक, क्योंकि देखा जाए कि ब्रसल बेल्जियम इंग्लैंड डच्चलैंड यहाँ भी हमारे हिंदुत्व है
1: बहुत,
0: एम्बेसी से जुड़े हुए हैं। और अगर जो हम लोगों ने वो मोई प्रोखामा लेकर एम्बेसी के पास जाए तो वो लोग हम लोग के मदद करने के लिए तैयार है,
1: ठीक है।
0: पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हनुमान बनकर सब पार करा ले, अब वो मैं हवा पे तो नहीं देख रहा हूँ कोई और के।
1: ये बात नहीं है भाई संजय, बहुत लोग है, आप भी तो है, कितने कितने प्रोग्राम करके तो चीज़
0: देखो है। कहने के तौर पर ये है हम लोग यहाँ बैठ करके बात कर लेते हैं, पर बात करने से नहीं, ये मुद इक्वालिटी तो है भाई। ये जैसे कि अभी आपने कहा और चलो 9 दिन के ना सही, हम तो 45 मिनट वाला और वो ही 45 मिनट वाला हम लोग के चाहिए 5 तक मिनट में अफरौंद करेंगे, मैंने बोला 5 तक 10 तक मिनट में, क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम बनाते हैं गोरे लोग तो वो लोग अपना प्लानिंग बहुत स्ट्रक पकड़ते हैं। हमारा प्रोग्राम जो 45 मिनट के है तो उसे हमें 30 मिनट

0: किसने देखा,
1: कल किसने देखा है
0: भाई साहब? नहीं, क्वार्ट फोर हो गया है सात बजने में,
1: क्वार्ट फोर हो गया है सात बजने
0: में, एक घंटा हमने तीन बजे आया, कुछ लोग कुछ सुना दे, कुछ
1: एक गीत चला देते हैं।

मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों सुनने वालों, अभी हम भाई जॉनी जी के साथ कुछ संदेश को रखे और देखा जाए कि रामलीला जो हॉलैंड में होने वाले है और अत्यंत सुंदर है जो कि हम लोग कोशिश करने को जा रहे हैं। कोशिश भी ये है कि फाहन भी अपने ओर से जो रामलीला शायद 9 दिन ना सही पर 2-3 दिन के लिए भी कुछ और लिखा जाए और हम लोग भी प्रस्तुत कर सके। और भी गीतों जो हमारे प्लेयर पे रखे हुए हैं, देखते हैं कौन सा गीत इस बार हमारे कंप्यूटर ने ट्यून करके रखे हैं।

0: सुनो लो, और यहाँ पर हमारे जो कुलेखा साथी सीतू दत्वा तो चमके है भाई यूसुफ जी, जो अपना कार्यक्रम के लिए ही लोगन भाई तदनी से 8 बजे से आप लोग के कार्यक्रम हम लोग को थोड़ा अवसर छोड़ दे वाल करो, कुछ सुना दे अपने लॉयसरास के कि अभी क्या लेकर आने वाले हैं आप सब।
1: जैसे सबको के मालूम है कि हर सोमवार के हम लोग 8 बजे से 10 बजे रात तक गीत गसल कर रहा हम भाई गंगा।
0: और सोमवार के हिंदुस्तानी में कैसे बोला जाए?
1: रविवार।
0: दोस्तों सुनने वालों, हम लोग एक दूसरे के देख लेते हैं तो बस इतना मगन हो जाते हैं और इतना खुश हो जाते हैं। अभी कार्यक्रम जो कि अव्यल प्रोग्राम होते हैं ना आप लोग का, अव्यल प्रोग्राम जो, हाँ अव्यल प्रोग्राम होगा। और भाई यूसुफ जी जो आ गया है अभी तैयारी में लगे हुए हैं, माइक्रोफोन लेने वाले हैं।

0: भाई यूसुफ जी, हम लोग अपना कार्यक्रम के और जो हम लोग के खदेलता है, जो हम लोग कुछ कह रहे थे, यहाँ से समाप्ति के सीमा पे आकर पहुँचे हैं। पर आज रात्रि में कोई ख़ास गीत है, हमने देखा एक पर्चा कि आजकल अमिताभ बच्चन का गीत को ज़्यादा चलाया जाता है, ऐसा क्यों? पर तेमा उसे धरा गया,
1: हम लोग आज
0: ओ खून लगातार रहेगा,
1: सब कोई बैल करी 924 हम लोग के है, और आदमी लोग बैल करे, हम लोग सबके गाना ड्राई कर देला
0: ऐसा। तो दोस्तों सुनने वालों, यहाँ तक हमने आपके साथ सहयोग दिए, आशा ये है कि आप सुनते रहना। यूसुफ जी और गंगा जी का कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने वाले है। सभी को नमस्कार, जय गोविंद।

फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए हैं एक फिल्म जो 2025 में नई खतीन मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मारतार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया है ना रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या और...

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में और बनाया गया है कि आप सौ न्यूज़ रखें हम नार्थकाई का। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं, और जिसमें अक्षय खन्ना और जानवी कपूर के

सोम कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

एक के प्रभु का नाम, तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य यह है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुनकर रखे हुए है वो हम सफ़र मेरे शाहिद कपूर और कृति सनान, एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में और ये फिल्म रिलीज किया गया।

सुनो वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए है और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

तुही मेरा आज और तुही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों, हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर, उससे एक और गीत रखेंगे।

फिल्म जिसमें काम किए हैं रणवीर सिंह और नया कलाकार सारा जो अपना कला को प्रदर्शन दिए है। दोस्तों मैं एक और सॉन्ग चुनकर रखे हुए है 2026 के नए सॉन्ग से निकाला हुआ तेरा प्यार में, और ये फिल्म में आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है उसने काम यानी कि उसके ओर से रखा गया। देखते हैं क्या सुना रहे हैं।

एक फिल्म जिसमें आर्यन खान और राश मीखा ने काम किया है 2026 में, और ये गीत जो रजिस्टर हुआ है और देखा जाए कि कितना सुंदर रूप से ये अपना कला को प्रदर्शन किए है। एक और फिल्म का नाम जो भूत बंगला है अक्षय कुमार का, और ये भी अभी रिलीज नहीं हुआ है, आने वाला है। अक्षय कुमार का भूत बंगला, जो उससे मैं गीत रखने को कोशिश करेंगे।

0: समझ रहे हो, ये जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाले हैं। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और राशि खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

लव स्टोरी 2026 का, जिसमें इमरान हाशमी और राशि खन्ना ने काम किया रोमांटिक सॉन्ग्स में, और जो 2026 से जुड़े हुए एक और गीत जो हमने चुन करके रखे हुए हैं और आवान जवान वॉर 2 से निकाला गया है, जिसमें काम किए हैं ऋतिक रोशन और कियारा और अतवानी। कियारा अतवानी और ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में अपना कला से प्रदर्शन दिए हैं।

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं।

जीवन में इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मित्रों, क्योंकि ये जीवन बहुत बेअंबनापूर्ण है, खुशी को जानने के लिए दुख की आवश्यकता होती है, मौन की सराहना करने के लिए शोर की और उपस्थिति की सराहना करने के लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है। मित्रों, इसीलिए हो सके तो आप हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें।

दोस्तों, जीवन में कभी आशा मत खोना। आशा सब कुछ चालू रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। कभी मत सोचो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और कभी मत सोचो मित्रों कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन हमेशा सोचो, मेरे पास कुछ है, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। मित्रों, ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे।

भाई बहनों, आप और आपका परिवार हमेशा हरे घास के मैदान की तरह फूलों के सुंदर रंगों और बेहद आकर्षक खुशबू के साथ खिलते रहे और एक व्यक्ति की तलाश में एक सच्चे व्यक्ति को मत खोइए, क्योंकि पूर्णता एक कल्पना है लेकिन सच्चाई हमेशा एक वास्तविकता है, हकीकत है। कृपया इसे याद रखें।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां व समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी राधा का अनुभव है।

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा।

सुनने वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ से सुबह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं हूँ संजय और आपके साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे।

और जहाँ खुशी है तो कहीं भी गम भी हो सकता है, तो जहाँ गम है भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि उन्हें शक्ति प्रदान करे।

जो तैयारियां कर रहे स्कूल जाने के लिए, तो उनसे कहूंगा कि माँ सरस्वती जो ज्ञान का भंडार देने वाले हैं उन्हें भूलना नहीं।

जैसे कि अभी आपने सुने हरिओम सरन जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन। सुनने वालों, ऐसा हुआ कि प्रश्न गुरु महाराज जी, भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है और उनका ये नाम क्यों पड़ा, बताने के कृपा करें, ऐसा प्रश्न रखे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न रखा गया तो उसका उत्तर ये कहा जाता है कि पशुपतिनाथ शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक शब्दादिक और एक तात्विक।

जाता है कि शब्दिक अर्थ जब लिया जाए तो पशुपतिनाथ, पशु पति और नाथ तीन शब्दों से और जुड़ा हुआ है, अर्थात पशुओं का पति वह नाथ। पति का अर्थ होता है पथ रखने वाला, कहा गया है कि नानक पथ पति जाइए जा पति राखे सोई। नाथ अर्थात भगवान। इस अवप्रकार पशुपति नाथ का अर्थ हुआ पशुओं का रक्षा करने वाला भगवान।

जय माता दी जयकार के साथ ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनो वालों, भारत में एक गांव कहा जाता है मोहनजोदड़ो नाम से, और एक बार ऐसा हुआ कि एक भयंकर बाढ़ आए और वो पूरे गांव वहां से लुप्त हो गया था। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो एक गांव था और वहां पर खुदाई हो रहे थे, यानी कि वैज्ञानिक द्वारा जो हम आर्कियोलॉग कहते हैं, और वहां से भगवान शिव का एक बहुत पुरातन तस्वीर मिली। इसमें भगवान शिव ध्यान के अवस्था में बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर पशु बैठे हुए अर्थात

जाते हैं चित्रित में अस्पष्ट भगवान शिव को पशुओं की स्वामी के रूप में अवचित्रित किया गया है। वैसे भी हम देखे कि भगवान शिव के गले में सर्प को अवधारण किया है। वाहन भी एक वृषभ यानी कि एक बैल है। केवल भगवान शिव के ही नहीं, सभी धर्मों के अनेक और देवी देवताओं के वाहन पशुओं ही है। जैसे देखा जाए कि सरस्वती माता का वाहन हंस है, देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू, गणपति का वाहन मूषक है, देवी दुर्गा का वाहन सिंह और रोम का देवता विनस का वाहन कपोत है।

संकेत है कि पशु परमात्मा द्वारा और रचित इस सृष्टि के अभिन्न वे महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि समय और परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार कई बार ईश्वर ने पशु रूप में भी अवतारित लिया।

विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य, कश्यप और मुवारह अवतार पूर्णताय पशु रूप में ये थे और नरसिंह अवतार आधा नर और आधा पशु रूप में अवतारित थे।

ईश्वर ने तो हमें कितने ही अवसंकेतों द्वारा समझाया है, पशु भी परमात्मा की ही रचा तथा परमात्मा के ही रचना है और उसे प्रिय है।

रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने कहे है, मम माया संभाव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उप जाया ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है और इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है कहते कि वे सभी मुझे प्रिय है क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। और सभी हमारे प्रिय होते हैं। समझ समझ के समझो, ये भी एक समझ है क्योंकि इसमें हमें किस प्रकार दृष्टि डालना है। जितना चराचर जितना जीव है, कहावत है कि सब भगवान के द्वारा उत्पत्ति भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं।

शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

शास्त्र कहा गया है कि आखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोही बराबर ही दया, कि सब पर मोही बराबरी दया। ये संपूर्ण विश्व मेरे पैदा किया हुआ है, अथ सब पर मेरी और बराबरी दया, यानी कि बराबर का और दया है।

कवि ने इन्हीं अवभावों को शब्दों में कुछ यूं पिरोया है। उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, कि मानो पशु पक्षी लता पदप कीट पतंग सब में प्रभु नित्य वास रहे। सब में उनके अंग कहने का भाव कि इस अवधारा पर श्वास ले रहा प्रत्येक जीव प्रभु का अंश है, इसीलिए प्रभु को अप्रिय है। परंतु ये सभी सत्य ही है। इन सभी जीवों में से मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वोक्त कृत्य है। ईश्वर ने मानव को अपने जैसा ही बनाया है।

संबंधों का कुछ पांच सीढ़ियां होते हैं। देखना पहला होता है, अच्छा लगना दूसरा होता है, चाहना तीसरा और चौथा होता है पाना। ये चार बहुत सरल सीढ़ियां है। सबसे कठिन पांचवा सीढ़ी है, इसे हम निभाना कहते हैं। तो दोस्तों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं औक्तंत भजन प्रोग्राम जो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और अगला भजन जो रोटरडम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति उनके ओर से ये सुंदर सा भजन।

अनूप जलोता जी के आवाज में हम सब सुंदर सा भजन को जो सुने, रोतदम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोतदम वेस्ट ब्लॉक बाकरस्ट्रात 46 श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से पंडित मंडली सभापति श्रीमान पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से कि जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो, कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं।

गंगा के किनारे, ये हरीशराज रघुवंशी ने ये सुंदर सा भजन को और गाए है। अगला भजन जो हम रखने वाले हैं हमारे अख्तुंत भजन प्रोग्राम कार्यक्रम के

शिव ही मेरी स्तुति, शिव ही मेरा ध्यान, शिव ही है मेरे गुरु, शिव को कोठी कोठी प्रणाम। अगला भजन का मांग करने वाले श्रीमती लीलियन मोतीराम जी। श्रीमती लीलियन मोतीराम जी जो अपने ओर से ये सुंदर सा भजन हम सबके लिए मांग किए हैं। दुनिया के हर एक कोना में जहां तक इंटरनेट है ये कार्यक्रम को सुना जा सकता है।

हर हर महादेवा रे देवा, ये सुंदर सा भजन जो स्पॉन्सर किया गया फ्रॉ लिलियन मोतीराम जी के ओर से।

जिनका व्यवहार अच्छे और दिल छू लेने वाला होता है, जिनका व्यवहार अच्छे और दिल छू लेने वाले होते हैं, उनके लिए दुआएं अपने आप निकल आते हैं। हमारे फाहुन का दिरक्सी और सभी स्टाफ लेडर की ओर से ये सुंदर सा भजन जो हम अब आपके लिए प्लेयर पर चुन करके रखे हैं।

सुनने वालों, ये सुंदर सा भजन जो हमारे डायरेक्शन और स्टाफ के ओर से रखा गया। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं और अनूप जलोता जी के आवाज में। सुनने वालों, हमारे अगला भजन जो स्पॉन्सर किया गया है दनहा खै क्नुतल स्त्रातिन हिंदी प्रचार संस्था परिवार चान गुरबीन के ओर से। हिंदी के बारे में कुछ भी मानो बात आपको करना है, कैसे पढ़ना है, लिखना है, कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बारे में आप जरूर चान गुरबीन जी को और मालूमात कीजिए। उनका तार का नंबर है 06 45 09 05 26। उनके ओर से ये सुंदर सा भजन।

0: सुख के सब साथी,
1: मेरे राम
0: दुख में ना कोई। सुन वालों, यहाँ आज तक हमारा हिस्सा कार्यक्रम का। आशा ये रखता हूँ कि आपको कुछ न कुछ अच्छा लगे होंगे।
1: दुख में ना को।
0: सुनने वालों, ये कहा जाता है कि वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते हैं, बस सही साबित होने में वक्त लगता है। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और आपको एक शुभ दिवस। Fijne dag toegewenst.

आपके लिए ये सुंदर सुंदर गीत भी चलाया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों, गंगा में डुबकी लगाकर, गंगा में डुबकी लगाकर तीरथ किए हजार, इससे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। रोज जाकर डुबकी लगाना गंगा में और विचार ना बदले तो। आप तो समझदार है, आप तो समझ गए होगे। कहते हैं कि किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। एक बार फिर कहते हैं कि किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे।

in alle gevallen jouw geweten laat jou wel weten. Heb dan een schone geweten. Onze geweten zijn onze grote, grote, grote rechter. Adalat wahi hai. अदालत से हम जाकर झूठ बोल सकते हैं पर अपने आप से नहीं वो पीछा करते हैं आखिरी सांस तक आया सावन झूम के मोहम्मद रफी जी और लता जी की आवाज में टाइटल सॉन्ग यहां से आपके लिए पेश

सावन झूम के ये सुंदर सा गीत रफ़ी जी और लता जी की आवाज़ में यहाँ से मिलकर और श्रवण की है ताइतो सोम जिसे हमने बताई है यहाँ से चला दिया गया है। बेईमान से कमाए हुए पैसा, बेईमानी से कमाए हुए पैसा आखिर में बीमारी में लग जाता है। हाँ, कम कमाओ मेरे प्यारे सुनने वालों, कम कमाओ लेकिन ईमानदारी की रोटी खाओ। ये गीत से पहले आपने सुने यहाँ से मिलकर हम सुने कि मेघा रे मेघा यो गीत में आए थे ये शब्द। तो मेघा तो हम जानते हैं सूरीनाम से मेघा को कहते हैं केकर मेघा, बल्कि असली में हिंदी शब्द होता है मेघा यानी कि बारिश। रेखन, रेखन को कहता है मेघा। ये बात मेरे को पहले भी नहीं पता था, पर सोचते विचारते और पूछते तो आगे बढ़ चले हैं कि मेघा कहते हैं बारिश को। तो जिस जिस बात को मेरी को ज्ञान है तो यहाँ से मैं आप सब से वो शेयर करती हूँ, बांटती हूँ। एक गीत भी है बैठक गाना में जिसमें कहते हैं कि अटरिया पे लागल चोर, अटरिया पे लागल चोर। तो ये शब्द भी अटरिया, तो हम सोचते हैं कि हमारे इन खवांदे हैं, पर इन खवांदे नहीं है। शब्द ऐसा कहते हैं कि अटरिया, पर अटरिया को कहते हैं बालकोन को, जिसे हम सूरीनाम में गदरी कहते हैं। बालकोन गदरी इसको कहते हैं अटड़िया, कि अटड़िया पे लागल चोर बला मजारा जाग जाना। ऐसे कई ऐसे अन्य शब्द है, अगर हम इस पे गौर करें तो इसका असली मतलब, इसका अब असली जो बात है उसको हम पता कर लेते हैं।

सब खेल है, कर्म का सब खेल है, ये लौट कर आएगा, ये लौट कर आएगा। मेरे सुनने वालों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, कि कर्म का सब खेल है, ये लौट कर आएगा। कर्म का सब खेल है, कर्म का सब खेल है, ये लौट कर आएगा, ये अवश्य ही लौट कर आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है ना, जो आज तुझे रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। ये कर्म का सब खेल है, ये लौट कर आएगा।

दो दिन की है जिंदगानी। स्वामी शंकरानंद जी कहते हैं कि किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखो। पाने की लालसा ना रखे, पाने की लालसा ना रखे। जलन की भावना से बचे, जलन की भावना से बचे। रोजाना रोजाना ध्यान करे, मेडिटेशन है सैफर यू एन एल का। जो कभी बदल नहीं सकता, जो कभी बदल नहीं सकता, उसे सहना सीखो। और कहता है कि किसी भी काम को टालो नहीं, किसी भी काम को टालो नहीं, और ऐसा कोई काम ना करे जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमें आगे में पछताना पड़े, और जो अच्छा कर्म है, जो अच्छा कार्य है, उसको टालो नहीं। इसको भी एक बड़ा शब्द में कहा गया है, अक्सर हम सुनते हैं कि जो कल करना है सो आज करो, और जो आज करना है सो अभी कल धारो, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। और जो बुरा विचार आए तो उसको जरूर से टाल देना, हाँ हाँ उसे जरूर से टाल देना, क्योंकि उससे आपका भविष्य खराब होता है। बुरा विचार आए तो उसे टाल देना, हाँ सालों तक उसे टाल देना। अगर अच्छा विचार आए तो झट कर देना, झटपट कर देना, उसमें वक्त नहीं लगाना।

0: यमराज जी, ये मूर्ति किसकी है?
1: हाँ, ये मूर्ति किसकी है फिल्म क्रांति से निकाला जाता है ये सुंदर गीत आपके लिए।
0: ये मूर्ति देवी की नहीं,

अब के बरस तुझे धरती की रानी, तुझे धरती की रानी जरूर से कर देंगे। मनोज कुमार और महेंद्र कपूर जी सुना दी है देशभक्ति गीत। फिल्म का नाम क्रांति, जो नेकंतीन इन तख्तख में रिलीज किया गया है। और ये गीत जब जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भारत की 15 अगस्त का दिन याद आ जाता है। अगस्त 1947, मैं उन दिनों नहीं थी वहाँ पर, मेरी तो पैदाइश भी नहीं होती, फिर भी फिल्म देखी और इतिहास जो सुने हैं तो ये बता देते हैं कि ये एक इतिहासी देशभक्ति गीत है। Onafhankelijkheidsdag wordt jaarlijks gevierd op 15 augustus. Ja, op 15 augustus als een nationale feestdag in India ter herdenking van de onafhankelijkheid van het land van het Verenigd Koninkrijk op 15 augustus 1947. De dag waarop de bepalingen van de Indian van de Indian Independence Act, die de wetgevende soevereiniteit overdroeg aan de Indian Constitute Assembly, van kracht werden. India behield koning George de VI als staatshoofd tot de overgang naar een republiek. Toen de grondwet van India van kracht werd op 26 januari 1950. Toen de grondwet van India van kracht werd op 26 januari 1950 gevierd als Indian Republic Day. En het voorvoegsel 26 januari ko jo hum यानी कि सभी भारतीय लोग मनाते हैं, जो ग्रंथवेद वहाँ पे फन कराता गया है। और 15 अगस्त 1947 के जो भारत देश भी आज़ाद हुआ है फरेनख्त कोनिंग क्रैक से।

0: ये अंदाज़े गुफ्तगु क्या है, अर्ज किया है रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल।

गजल सुना दी हमको जगजीत सिंह जी ने, वो कागज की कश्ती पपीर बोट।

En als je toch drinkt, drink in ieder geval niet meer dan 1 glas alcohol per dag. Hou 2 alcoholvrije dagen per week om gewenning te voorkomen. जैसे हम सूरीनाम में देखते थे तो बुज़ुर्ग लोग तो था जो खेत में काम करते थे शाम के वक्त में खाना के बाद तो वो एक पैक ज़रूर लेते थे और मेरे ख्याल से वो एक दवा के रूप में था। दवा के रूप में वो सब लेते थे दिन भर के थकान उतारने के लिए और वो भी उन दिनों में काफ़ी तंदुरुस्त थे क्योंकि काम करते थे समय से अपना पैक लगाते थे खाते पीते अच्छे से थे। हेल फेल लेखांस बख वेखिंग वारदर तुन Op zo'n manier heb je dan ook minder kans op ziek.

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: उफ़ ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
0: हम्म,

आपके साथ आपके मौसम आपके सावन जी धर के। लता जी की आवाज में फिल्म का नाम जैसे को तैसा 1983 तक में ये रिलीज किया हुआ फिल्म है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का ये मतलब होता है कि आप चलना सीख जाए। एक सच्ची बात आपसे कहना चाहती हूँ। एक सच्ची बात ये है कि बुरे समय में दिलाशा देने वाला, बुरे समय में दिलाशा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वो दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वो दिल से उतर जाता है।

0: कितने मधुर पुकार है मेरे प्यारे सुनने वालों, रफी जी की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त नईमुद्दीन अख्तर सेस्तक की ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। म्यूजिक इसमें दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मयूर सुल्तानपुरी जी के लेखक हुए। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाता है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: आप सुन रहे हैं फाहन हिंदुस्तानी रेडियो, आपके लिए। तेरा पीछे ना छोड़ेंगे सोनिए, फिल्म जुगनू से किशोर दाजी की आवाज में।

बड़ी अजीब दुनिया का चलन है, बड़ी अजीब दुनिया का चलन है, अपनों को अपनों से ही, अपनों को अपनों से ही जलन है।

फिल्म यादों की बारात से ये सुंदर सा गीत निकाला गया किशोरदा और हम देखे तो मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये सुंदर सा गीत हमने श्रवण की है और म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर आर डे बर्मन जी। यादों की बारात टाइटल सॉन्ग आपने सुने। November 1973 के पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है।

तमाशा सच का होता है, तमाशा सच का होता है, झूठ की तो तारीफ ही होता है। हाँ, झूठ का तारीफ ही होता है, पर परिणाम कुछ और होता है। कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं। हाँ जी, कोई आपका प्रशंसा करे या आपकी निंदा करे, दोनों ही अच्छे हैं। तो आप सोचेंगे क्यों? तो क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है, प्रशंसा आपको प्रेरणा देती है, और निंदा सावधान होने का अवसर देता है। प्रशंसा प्रेरणा देता है और निंदा सावधान होने का अवसर देता है। यही अंतर हो जाता है प्रशंसा और निंदा में।

रोमांटिक सॉन्ग रफी जी के आवाज में मतवाली मतवाली मतवाला कर देते हैं इनका शब्द और बयान इनका। तारीफ ही तारीफ, बहारे फिर भी आएगी लेकिन 3 सेशन तक ये पिक्चराइज किया हो फिल्म में आपके हसीन रुख पे। मोहम्मद रफी जी की आवाज में लायरिक्स यानी के गीत का लिखक है अंजाम और म्यूजिक इसमें दी है ओपेन नायर जी। फिल्म का प्रोड्यूसर गुरुदत्त जी जो एक एक्टर भी था।

अवश्य मनुष्य अपने क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वो हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो

और मदद, मदद और मुस्कान, ये दोनों ऐसा इत्र है मुस्कान और मदद ये दोनों ऐसे इत्र है जिन्हें जितना अधिक दूसरों पर छिड़कोगे उतना ही अधिक सुगंध आपके अंदर आएगी।

चल काए जाम मेरे प्यारे सुनने वालों, रफी जी की आवाज में यहाँ से एक बार फिर हमने सुन ली है फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जरूर से देखा है आप ही के आंखों में ऐ मेरे दोस्त, प्यार ही प्यार बेशुमार। फिल्म प्यार ही प्यार से निकाला गया है, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, डायरेक्टर था बप्पी सोनी और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन।

अवश्य ही माजी चल ओ माजी चल, मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक बार फिर हमने यहाँ से श्रवण की है। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत का लेखक आनंद पक्षी जी। अगर आपका जमीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नीयत से जाने जाएंगे, दूसरों के सोच से नहीं। मेरे दोस्तों, वक्त कभी ना किसी का था ना कभी होगा। खुशी में ये कम और गम में ये लंबा होता है। इसलिए ऐ दोस्त, खुश रहो और मन में गांठ। खुश रहो ऐ दोस्त, खुश रहो।

καλά να γιάνει ούτσι νίτσι, καλά να γιάνει γιάν, σώσου τη μάντα, DJ, χαμκο, απνί, άνζιρ μάντε. तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरे राम से शिकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारा प्यार की पैगाम दोस्तों आज है मंगलवार हो चुका है 23 घड़ी की ओर देखा जाए तो 11 मिनट ओवर 11 हो चुका है 11 बजे सुबह है दोस्तों और आपको हम एक घंटा देश विदेश के समाचार को सुनाएंगे एक बजे से आ जाएंगे बीबी साहिबा रहीम बख्श अभी आप लोग शांता से प्रोग्राम को सुना है यहाँ से एक घंटा हमारा देश विदेश के समाचार आपको सुनाएंगे और हमारा प्रोग्राम आप लोग सुनते रहना यहां से हम शुरुआत करते हैं

बड़ा बड़ा खबर आज है सूरीनाम देश के और अन्य देश के और देशों के समाचार हम आप लोग को आज रिश्तक से सुनाएंगे। हमारी जनता आप जहां भी हो, हमारी प्यार हमारे मोहब्बत आपके साथ है, ये आपको मालूम है। हमारी जनता अब देखो भैया सूरीनाम में नवा रखे रिंग तो तुलो जाने एक बड़ी सोई गए है और ब्लाइफ मार मेंजे हीर दार तखान बनूम और आप लोग जानो भैया एगो एगो अरे भैया पास्टर है मैये तो लोग जानो ये हुई मैये है का बोले एगो पास्टर है तो एक के सभन मांगे है रखेरिंग फिनिश यानी कि एनपीएस के अने रुसलांत के और एनडीपी के रखेरिंग गर्गरी रुसलांत और जीमोन एक के बनूम करी से मैये के इसराइल के अम्बासडर तो एकर बारे में वही के क्वालिसी पड़ती है और फ्रैक्सी लेडर सेल्फ एनपीएस के वो है जेरल पावी रेजो और ब्रोंटो सुबह हार जो पेयल के बोले सबन बहुत फरपास है कि रखेरिंग जो है बोले हैगा ऑन डांस बोले हैगा एंकले यारन पार यार खलीने इला पालास्टाइन के एरकेन करी से जैसे को देश और बोले तो इस अब का करे है जाए के इसराइल में बिशप स्टीफ मेयर के बनूम करी से हुआ रेसी देरेंद अम्बासडर फॉर सूरीनाम से फंड स्टार्ट इसराइल तो मलाई पावीरो बोले है भैया पावीरे जो बोले है गा बस लेटन हैंडलिंग इसराइल के तीखन ओवर द पालेस्टाइनन फुलकॉमन इंस्ट्रेशन में ने नॉर्मन एंड वार्ड फॉर सूरीनाम एकर मारे में मेल्विन बोफा बैतलांस साक और इंटरनेशनल हैंडल के बोले है दैट सूरीनाम बस्तांद बिलैटरल रिलेशनशिप विद इसराइल फॉल्स हेम हीव द लैंड सेल्फ प्रोजेक्टन geïnitieerd en die nog lopend zijn, bolle Israël, bolle hier projecten krijgen, bolle hem lukke contacten hè, te bolle kijken naar krab, te bolle ga landbouw, bolle landbouw initiatieven, projecten gezondheidszorg, bolle campus van universiteit voor vloeien van uitbestaande relatie doen hè Israël ke, kerbaar in bouwfa bolle hè, volgens de minister is het standpunt van Suriname uit 2011. Onveranderd, bolle hem lukke hee. NPR-fractieleider Pauwie Regio. Stel dat je Suriname een vreedzame samenleving is, waar alle etnische en religieuze groepen al eeuwen met elkaar in harmonie leven. Het vervreemd hem daarom, die regering jijke Israël mee, of jijke ambassade dere hee, meeke. Bolle in maart van dit jaar heeft het parlement van het land een wet lezega, die doodstraf hooi, doet gelden uitsluiten voor mensen door etnische groepen, religieuze geloof voertuigen. De Palestijnen, dat is volkomen in strijd met de normen en waarden van ons land Suriname. Bolle volgens NPS heeft Suriname pas 95 mee. Ego bolle na de apartheid was afgeschaft, diplomatieke relaties uit Amerika, Zuid-Afrika aangeklopt. Toen ik er waren bolle 80.000 mensen zijn omgebracht in Israël. Deze stad van Surinaamse regering roept daarom vraagtekens bij hem. Bolle Israël ze bolle ze contacten naar Chahin. Hamluk ambassade hoe naar Chahin ga. Omloon Tulunjane hega Israël. Palestijnen ke utrafde musulman ke hua dagi se aur tulo jano ho so mohar jo wo bhi musulman hai aur ek wa malai bhi musulman hai to usab natuurlijk voor de muslim chief se opgenomen ki palestijnen ke dagi se utrafde aur bole hum log ke hiya ke ambassade jayega hua israel mein aur baufa bole hai israel ke bole ke tra project ab ni suriname mein chale hai bole hum log ke khad nu sakhle khega NDP-parlement E.B. Jones verdedigde het besluit van de regering en stelde dat intussen 13 CARICOM-landen diplomatieke banden hebben met Israël. Aan de andere kant houden CARICOM-landen, inclusief Suriname, zich aan de VN-resolutie van de staakt te vuren en het recht van een Palestina naar bestaan. 11 van de landen hebben de VN-resolutie met betrekking tot Gaza en Palestina ook ondersteund, mensen.
तो ए बी जोंस भी बोले हैं चाहेंगा अब मसाल हुआ धरे के तो एक बारे में भैया हम जाइला सूरीनाम में बाप रे बाप सिपाहियन हुआ का करे है दादा रे दादा बड़ी आफत के बाद तीन गो अंदर ऑफिसर एगो देई पे भैया अख्तन डरत एगो ए हाफिरन डरत और देई टू फिरत ई सब भैया मदरेक्स के बारे में फर दो फन मिडल भैया एंड देई नेम अन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन आन खो अंदर ऑफिसर स्कोतुरा भाई द द्री ताल alleen bij brigadier van de politie is dit voorgelegd om sipahi op zoek te onderzoeken naar narcotica de afstemming met de openbare ministers en de verdachte politieambtenaren hangende onderzoek door de politie kaidai hem chillai chillai bolila ki Suriname ke dheer sipahi ke bhaiya biswas na hai dekhyo mahanga mahanga o to chalave bhaiya puchhiye kitna salaris hai to us salaris se admi khali ghar chalai sake to tu kahan pehle baate itna dheer paisa aur jai ke baki hua pe bhaiya glat hai glat सिपाही इस सब अंडरसुक ना करे ब्लास्टिंग दीस और वो सिपाही लोग के अब देख पकड़ी से तीन गो जो दृक्ष इधर से उधर कारबार करत रहा और तुलन जाने करा काम जब सुनियो भैया ते करा काम में बोले दृक्ष जरे हैगा ऊंची युवा बड़ा ऑन ऑन बन बन एक विश्वास करे लायक ना भैया हाँ तो अब जाइए भैया सूरीनाम से फरीनिंग फन इकोनॉमी से इकोनॉमिस्ट इन सूरीनाम का नाम बा फेस उसे बोलेगा बखरेब द बसलेसिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन और टाइटन सूरीनाम की बोले हैगा वेरल्ड वाइड बोले बकेंट हैगा कि इंटरनेट दिस दोन स्टारलिंग के geen dienst in Suriname te laten aanbieden. Volgens beschikbare informatie is Suriname de enige land in Zuid-Amerika waar deze niet wordt toegelaten. Bhaiya, of festieven Debi Prasad bole hega IBC me bole hega moeilijk na samaj pawe u ki kahe ke Starlink volgens hem voordelen kan bieden voor de overheid en afgelegen gebieden. Telecom providers zouden daardoor niet over al dure infrastructuren hoeven aan te leggen. To bari lamba chowda likhi se bhaiya FES ke bare mein. Lekin news jana hai tab dekho bhaiya hum jai South Korea mein bhaiya hua ke go purana minister 25 baris ke jahal pai se South Korea ke baat chit hai 25 baris ke bhaiya for role in a no to stand ke bare mein go role okay raha te ek 25 yaar ke bole joni precis kari se kaam to hua ke purana minister yushishi ke South Korea ke oka naam ba Park Chung Yee बोले रेख बांग साउथ ने सियोल में 25 बरिस के जहल पाई से रेखतरों के बहुलक बोले फल दूंद अने भवेश पाई से 2024 में के को बड़का रोल खेल रहा है अफकोंदक फान स्थान फान बलेख दोर प्रेसिडेंट यूंग सुक्यूल बोले हैगा अने प्रोबेर met de noodmaatregelen in het parlement buitenspel te zetten. De oppositie met meerderheid in het parlement zou nauwe banden onderhouden met Noord-Korea en alles aandoen om het beleid van de regering te frustreren. Volgens Yoon waren dat voldoende redenen om een militaire noodstand uit te roepen. Deze duurde slechts enkele uren. Ondanks een blokkade door de leger bereikte parlementsleden toch de vergaderzaal waar ze resolutie aannamen om de staat van beleg terug te draaien mensen bolus ruiterrol bij de toestaan de is op regering ke baantje te bhaiya jahan pe tu jane ego baithe ek waak oise kare hai to ye baat hai hamare janta South Korea ke bare mein to hamare pyare mausi lon bhaiya और ये यानी कि मैं के बारे में तो अभी आप लोग को हम बता चुका है कि एक बारे में दीबतीर सब करे है पार्लियामेंट में कि एक के सब दुई मिला ना मांगे हैं और दरस आदमी मांगे हैं कि पालस्तीन के अने इसराइल के अम्बासाडर बने के
और यह मैय के बारे में भैया बड़ी गर्मी है हाँ कोडर रोड इन स्टेट्स मेर यूरोपी से लंदन फनवीक एक्सट्रीम है तो गर्मी बहुत है नीदरलैंड बोले फॉर ऑल नो स्प्राके इस फन कोड और आए हैं यहाँ पे नीदरलैंड में कोराया है और आए हैं वर्ड इन स्टेट्स यूरोपी से लंदन कोडर रोड अफगेवन वीकेंड एक्सट्रीम है तो इटालिया में भैया बोले हैं बोले इन मेडर्स 15 स्टेट 15 शहर में सेवन कोड रोड करी से रोमन में मिलान से इन वोडर्स अपखरूबन बोले तेजस वर्मस्त दाख दिले बिनन तबले इफन भीतर घर में रहिए और बोले जियो कूलिंग खोजियो Frankrijk bole hega gaat gebukt onder een hittegolf 54 departementen is code rood aangekondigd. Niet eerder waren dat er zoveel of veel plekken die 40 graden hoe via Frankrijk mee. Zouden Franse scholen schooljon hega zouden go bole hitte ze ban hoe je heen. Fransen gaan zwemmen ter verkoeling. Sinds het weekend zijn zo'n 20 mensen verdronken. Ook mensen na de nieuwe paure via de paard. Die naar die dusse me na haan liet. Oude bolle Franse autoriteiten waarschuwen kregen. Ki jayo pade paure te na burio ja risico barka hai voor de uitdroging. Franse kernreactor werd tijdelijk uitgeschakeld omdat het koelwater warm was geworden. Kernreactor jene bolle ook een bankerise bolle pania garmaija hai. Ook in België is een hitte crisis mensen. Bolle dichterbij is extreme hitte. Belgische regering. बोले मंगलवार के वो कृषि सेंट्रम खोली सेगा कैसे अनपक करेगा रात के बोले कूलर रहे 25 रात अब बोले दैट इट अ सोनलक वार्म मेंस मित्र लोग हित दिन मिलके के बोले फन वीक द हित इज दर कोड ओरेंज गिवन और नीदरलैंड में अफगलोपन वुड्स द कोड ओरेंज रहा द वार्स्किंग ड्यूट इन ईदर गेवाल Tot in donderdag, maar de kans is groot dat dit wordt verlengd, mensen. Het raakt garmie heen, Europa mee, Euro aanploen bij. पानी पियो में खिलवाड़ न करिए दोस्तों हम भी यहाँ पर पानी ठंडा पानी लेकर बैठा हुआ है कि हम भी तरी से अफकूल हुई हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता तो आप लोग जानो हैं रुसलान भैया यूक्रेन के नाक में भैया नाक में और कदक काबुल है नाक में इतना प्रॉब्लम करी से जब देखो तो एक उड़ावे ओके उड़ावे है बम से दागे ड्रोन से दागे है अब यहाँ उल्टा चीज हो गया भैया उक्रेन अब कितना ड्रोन उड़ावे है और रुसलान के अनफाल करे भैया राफी नार्द रही दागे तो ई दागे तो ऊ दागे है तो यहाँ पे बताए गए है ड्रियन 20 यूनी के बात है और बोले हैगा फर्स्किलन द रीक्यूज रुसलान में ओस रुसलान में इज द फेरकोफ ब्रांस of aan particulieren aan banden gelegd. Op die manier willen de lokale autoriteiten voorkomen dat er gehamsterd wordt vanwege Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen en brandstoftekorten. John Rusland is tegen dunia bhar mein export kar een van de grootste exportland raha tel ke ab ohi ke desh mein tel na hai bhaiya tel bole bahut kamti hai aur bole saban hamster kare omdat Russische raffinaderijen gooien Oekraïne op een drone ze dagje ook het citradeze en Russische raffinaderijen worden al mander onder vuur geroemen Oekraïense legers en volgens Andriy Melik de een permanente vertegenwoordiger Oekraïneke bij de Verenigde Natie is 40% van het totale aantal raffinaderijen inmiddels beschadigd te bolen hierdoor Ruslandke raffinaderij capaciteit flink afgenomen doordat Suriname en daardoor sommige complexen meer dan eens worden aangevallen. To itra jabber bhaiya ab to Rusland apantil aprehi admik na dei pawe he. Daarnaast worden ook aanvoer
routers van brandstof verstookt, jahan stilwa samal le ja hai, ohu ke Ukraine dage hai. Rusland bole hai Skir eiland, de Krim is de verkoop van brandstof daardoor volledig stilgesteld. Ik ook Krim mee, wahan pe Rusland lele raha, aur tilkar ohu in de ban hoi ge hai, aur ekar baare mein in de regio Vladimir ten oosten Moskou mee, krijgen de hulpdiensten vervoerders en landbouwvoertuigen verlopen voorrang bij de voorkoop van brandstof, meldde governor of Telegram. John en Mick Hetikare, ook eens van Teel de Win. Ik ga ik weer naar jij de Zoam. Ja, burgers hebben de oproep gekregen om zo min mogelijk autoritten te maken. Bolle auto kan titelen je. Regering bolle Poetin ge. Bolle ik ga Teel hem lukken na he. Oostelijke Russische regio's is middels sprake van een brandstoftekort, waaronder in de Kazachstan grenzende regio is de verkoop van banden gelegd en is het gebruik van jerrycans verboden. Jerrycans met biedt ook het te maken tellen, jijke. 10.000 kilometer afstand komen in beeld. Volgens Kremlin woordvoerder John Hega Russische regering ke oliemaatschappijen kebolen om ervoor te zorgen die constante aanvoer van brandstof blijft. Bolle Hega ondertussen Oekraïne door aanvalkere Russische tilpe orgaskele installatie waaronder raffinaderijen, bollehega fabrieken, jetrahega exportterminals gewoon door. Oekraïne president Zelensky maakt afgelopen weekend melding van een aanval op de olieraffinaderij in de Russische regio Tumen. Om zo'n 2000 kilometer afstand van Oekraïne. Volgens de president is bij die aanval gebruik gemaakt van een nieuwe type lange afstand drone. Met deze drones komen ook doelen op ruim 10.000 kilometer afstand binnen bereik. Stel dat nou ook een Oekraïne banaan zeggen. Drone ook op een eigen fabriek. Van ja, op de ultatje joa hoewega. Raffinaderij gaan. Sapke als hij dag. Of Oekraïne plata kare hai. Oekraïne wil ki militaire druk jo nahega bole gepaard gaat met diplomatieke druk die moet Moskou ertoe aanzetten om een einde te maken oorlog bole hem ik had karela ki Moskou jo nahe Rusland ke oorlog wa ook het jij ban karek hamlo se herhaalde melding manda bij de VN. Gebeurt dat niet, dan overweegt Kiev om zijn voorstel voor een wapenstilstand langs het gehele front al ruim een jaar op tafel ligt. Op Rusland bole na mange he dabal i hem loke manier rahega ki hem druk karela ki oorlog wa ban kar Oekraïne anders gaan we door. De impact van de militaire druk op Oekraïne lijkt ook de Amerikaanse president Donald Trump niet te zijn ontgaan. Vorige week zei dat Rusland een deel van Oekraïne zou moeten sluiten. Voorheen was die boodschap meestal aan Kiev gericht. To ye baat hai hamare janta कि अब सब चीजों उल्टा हुए लगल है Oekraïne juist aanval kreeg Rusland koeper. En Rusland mee teelol naar hege. Bhaiya bole landbouwers ke voorrang hai. En bole Russische brandstof tekorten als gevolg van Oekraïnse aanvallen breiden zich uit mensen. To hamare janta aur aage ko hum apna program ko lekar और चलते हैं बढ़ाते हैं वो तो और देखो भैया मार्टिन लूथर किंग वेक में पारा क्रीक में हुआ के बड़की बन है भैया वेक लंग अफकसलोटन बड़की हुआ के पारा क्रीक के और बन है भैया एगो बड़का बड़की और बोलेगा बेतोन ब्रेक ओवर द पारा क्रीक और जो मार्टिन लूथर किंग वेक में है अंडर हाउस वहां हुए है और बोले बड़की बन है बोले स्वार ट्रांसपोर्ट खलन अपार्ट फरकेस मात्रीखलन और बोले उस सब के बड़की ना बोलेगा खबरेक माकन बोटर से हाईवे के ऊके उरस्तवस्तो के चाहे जाई के तेगो लंबा रूट आदमी लोग के मारे के परिगा हमारी जनता तो अभी आप लोग को और आगे के बातचीत हम बताएंगे हमारे जनता कि और करप्शन के बारे में भैया एंटी करप्शन कमिशन दू द्रेंगन अप्रूव आन फी
vi verplichtingen. To boli jo niye kya hota hai. To ye hota hai ki anti-corruptie wet jo ne go hega 13 April 2026 me dringen oproep kreet hega ki jo publieke functionarissen hega bole hega die op grond van de anti-corruptie wet verplicht zijn een verklaring van inkomsten van vermogen van IEV in te dienen. Bole het jetra lantike admi hen functionarissen bole verplicht hega anti-corruptie wet se bole ego verklaring afleg kareke ki kahan pe tu ipaisoon pahile he VIV ke matle verklaring van inkomsten en vermogen bole hega de ACC wees erop dat de door PG vastgestelde hersteltermijn afloopt tot 16 augustus en pahile te loket jahin sepke melde karde weke or ACC is het groot belang van de een verplichting, hun wettelijke verplichtingen alsnog nakomen. Deze gevolgen kunnen onder meer bestaan uit strafrechtelijke voldoening. De ikermanen mee verplicht is een keer augustus en pahile sepke verklaar kereke ki kahan kahan pe or tu isepci joon pahile baat anti corruptie wet ke bare mein to ye to acha baat hai bhaiya ma sab kuch wahan bikao hai bhai je to ke paisa hai te ye vetwa bhi tor ho jaye ye to hamara sirinam ke vishwas na rahegi hamari janta ab ek aurat bhaiya nikeryanan ke baat hai nikeri mein dui barani mein jhagda bhail hai bhai jhagda bhail sanichar ke raat ke aur nasan raha auratiya बस अपन घर में अपने आगे लगा दीस ना अनमिया भैया और अतिया लगा दीस और ये बातचीत हुए हैं शनिवार के रात में निकेरी के बात है भैया एगो नीखन फिर तक यार के और बोले द खसिन फोन द फॉलीडक इन फ्लमन एन फॉलीडक इन फ्लमन वास ऑपकनोमन और एक बार अपनी केरी के सिपाही गइल है और कई फने को सोल स्ट्रात है तो वहां पे ये चीज भईले भैया आगे लगल है और बतावे दुई परानी के झगड़ा में घर में आगे लगे दुई परनिया जे मोई हो जाए तब बैठ के मुड़ी पे हाथ धर के और यो की का बात भईले हम का कडल्ली बाटी और एगो रमिया के जरगे पीठी में किसी भाई अपन फुरतोई में ले गए है मुगरा में इस संतरे में और बताई गई है या खतई कन इस्लाह तो फरक्लार देते ही कनु वो पुलिसी दैट एम एन द ब्रांच ऑफ हेवन आंखस्कोकन और बोले एगो औरत के हिया भैया का किया बानल है और एक औरत की फोटो है जो अगिया लगाई से भाई अपन घर में अपने आगे लगाई के और तमाशा देखियो दारू पी के दोनों प्राणी तो ये बात बड़का रूफ ऊपर फाल भइल है हमारे जनता सनिचर के संजा के भइल है बैरखन सोप वेख में बैरखन सोप वेख में एगो जबरदस्त रूफ भइल है जहाँ पे देर तक दैसन एसएडी सब लीगे को ब्राउन फीस पे भाए फरदाख्तन दार में मांगते तो द पुलिस बोले है बरूफिंग भाई ने सर तीन भैया दिन वे के बोले हैगा रेड लंग समेशन ऑटो हाथ स्कोडर सास ऑप्शन स्कोट लिखन op een gegeven moment werd zijn voertuig ingehaald door een bromfiets met daarop twee personen die ik wat met hierdie op een auto leek jaat raam en ik was koude tas tangen raad je maar wat rapijsa raam en je teem ik een bromfiets inhaal karise en bromfiets wat ik inhaal karke ik er tas wat leek een peel bhagel bhaiya door de plotseling al actie schrok de automobilist waardoor de verdachten en inslaagden de tas met het geldbedrag buiten te maken. Na de beroving gingen de bromfietser en zijn medepassagiers er met hoge snelheid vandoor. Beide verdachten droegen hier integrale valhelmen, waardoor hun identiteit niet kon worden vastgemaakt. Als je pahai ik ek hoja ma tu otope baate bhaiya, chalat oto ma se isab ghiet lees te kahen oto wa leke dhavrai le. Haur ye sab amaan te, hamare Surinam ke, hamare pyare, pyare meetha, meetha janta. Suriname का न्यूज़ और कुछ और देशों का समाचार
हम आप लोग के बराबर देखो सिपाही भैया सेट एक्स्ट्रा पर्सनल इन बे अफ खसलोतन ब्रेक पारा क्रीक में एक्स्ट्रा जो बड़ो किया रहा हुआ एक्स्ट्रा सिपाही धरी से गा बोले तेने जो स्पूत ओफले बोले हो तो इनके इंस्पेक्टर लोन हुआ दो बेरख के गई ले हैं और बोले पॉलिसी पोसे पर अफ कर एलकार वान उड़क बैत स्थान उजन बड़ो किया बन करी से और सिपाही लोन हुआ पे भैया श्री नाम में द्रेक द्रेक जो पकड़े है तो का बोले है गा बहुत कम विश्वास है कि उची जीवन जरे है कि ना हमारी जनता पेंशन स्टेक 23 तक यूनिभाइम पेंशन के बारे में यहां बतावे है लिख मिलियन नीदरलैंड्स फॉर हु मरियेले ट्वीबीक द ओल्ड प्रेसिडेंट फ्रॉम डीएनबी लाइफ ऑन मास्क कर दे बोले यहां पे देखो ऐसा नहीं भाई लहा एनओपी पे बोले एंडक तो इन स्कैंडल वार ही नीदरलैंड ओवर प्लांट क्लास नोट के बारे में बोले 14 यार लंग प्रेसिडेंट फॉर नीदरलैंड से बैंक में रहा 14 बरिस रहा और बोले कैंडिडेट रहा फॉर सेटर रहा सेंट्रल बैंक के और खास रहा ट्वी बेकर में गो ओमा और बताई गई है बोले एट अंडर वेयर प्लिक स्टैंडर्ड Inflatie, hypotheken en de toekomst van de Nederlandse financiën. Niemand had verwacht dat het gesprek zou ontarden in een ongekende confrontatie. Oh, ik heb een altijd herhaling bedikt bij je via je programma. Oké, bare me. Toen aan het hem een giet zoon aan het Toen heb je hem aan het pas pin wapens aan jaren. Ik Gold and Gold ka song hai.

और दोस्तों, जब जब तुमको देखा है रे छलिया, ये गीत आप लोग को हमने सुनाई दिया है। तो हम चलते हैं चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। अब देखो भैया, बेना लंग से एक आदमी काम उम करके आयल की का करके आयल है और ओकर कोई पलवार जाने की शहर में मर गए रहा। तो बोले अब हम जाई डायरेक्ट का बोले मट्टिया में। अब मट्टी अट्टी में उ जाई के अपन का बोले सब कारबार करके अब बोले अब हम फ्राई हो गए। अब हम जाई तरी एगो कैसीनो हो जाई भैया। तो एगो भैया गैल है मजे में एगो कैसीनो में, और ये कैसीनो में गैल है तो हुआ खेलत खेलत खेलत खेलत एगो बदराख जीतल है, एगो खल बदराख जीतल है। और जब जीतल है तो बड़ा खुशियाली में रमिया रहा भाई, खूब खुशियाली में रहा। न तिलक तू जिले बाट एगो 50 बरिस के आदमी बा। तो ये रमिया बड़ा मोह से गैल है तो बोले अब हम जाई तरी कुछ खाओ ली हम। तो गैल है एक दरी कुछ खा तो तरा भैया तो हुआ भेटा नहीं एगो औरत के। और वो औरतिया हुए पे भैया हौसल करत रहा, जाने कौन हौसल हुआ तो हमें हौसल हौसल कर भैया रमिया का फंसाई से। तो रमिया के बोले अच्छा ठीक है सब कुछ मोई हो गया। रमिया दारू वाली भी पी से भाए। तो अब ये के ले के गए है अपन दूसरा कमुआ करे। तुम समझ गए ना पलटन तिवारी वैक में एगो पेंशन है और गैल है पेंशनवा में। अदमिया टैक्सी शोफेर है, टैक्सी शोफेरवा 50 बरिस के अदमिया के और वो औरतिया के ले गए एगो पेंशन में पलटन तिवारी वैक में। तब दोनों में भीतर रहा थे ये नमिया इतना गढ़ू काम करी से भाई की सूत गए। वही पेंशन में सूद गए, वही पेंशन में ही भैया सूद गए और लगाई भी रहा। बस ये औरतिया का करी से जितना पैसा ही जीते फीते रहा। एकर पजामा टांगल रहा भाई, जेस पजामा रहा और एगो ताश रहा सब वही में। ओकर का बोले है गई डेंसी तेज कार्त रहा और खेल बदराख रहा एगो बैगताश में और दोस्तस कार्त रहा मोबाइल टेलीफोन रहा सोना केती रा सब लेके छोड़ी पेल भागल भाई, पेल भागल है। तो आदमी ये जगल है तरीके के पजामुए ना है भाई, पजामा मके जितना चीज सब इसे चुरा ले गई है औरतिया। तो इस गनमी गल है नानिश करी से तस्कोतू गल है पेंशनवा में पलटन तिवारी वैक में। तो के बता इसकी दुई मिला ऐसे आयला ऐसे ऐसे समय पे। तो पेंशन वन वाला सब के कहते ही नंबर हुआ लिखा है कि कौन ओ तो आवे कौन ओ तो जा है। तो कहते हीकन के मुताबिक तो सिपाही जाई के और टैक्सी शोफेरवा के पकड़ी से वहाँ टैक्सी शोफेरवा और छोड़िया सम वैरक करत रहा और जाई के पकड़ी से गा का बोले हैगा छोड़िया के और टैक्सी शोफेरवा के कहते ही के नहीं से पाई से भैया। और बतावे आदमी त्रासी फन पेंशन ब्लीक दा द कहते ही के फन टैक्सी वार में दे फरदाख्त है ट्रेन फलित ओवर इन को में टैक्सी दी है तुई ताल एरदर ना रे पेंशन हाथ खबराख द स्पोर लेडर द पुलिस ze uiteindelijk naar de taxichauffeur tijdens onderzoek wist de politie een deel van de buik terug te vinden mensen ouro ouro tiake ouro ik heb pijgen maar ik zon wank ik het ja het ja abena pijse ik er baren me lief voor nog eens bij 52-jarige taxichauffeur

तो इसी गीत इस गीत से हम आपको अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। एक घंटा हो चुका दोस्तों, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम। जोनी नंबर वन है हमारा नाम।

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है?

गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

En daar gaan we weer. Dance and party time!

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और 9 NT मारे बे रेडियो फन हैप्पी ऑल टेट एंड 3 सेंसेशन
1: चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन।

मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुनने वालों की खिदमत में आदाब, नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, जून की 23 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाहों रेडियो के फूल टीम के तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफर पर जा रहे हैं, सफर मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ नीदरलैंड में आए हैं, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतजार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नखमे, नए और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं, बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। अभी आपने मुझसे पहले भाई जॉनी के जरिए से प्रोग्राम को सुन रहे थे। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन आप सुनेंगे।

परवर बिगाड़े आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा भी। आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से मेरे हिस्से का ओपनिंग सेलेक्शन सुन रहे थे।

ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना। अभी आपने आशा भोसले और साथ में मुकेश से गीत को सुन रहे थे।

0: और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे। रेडियो फाहन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में एक नज़र बाहर की ओर डालूं तो धूप निकला है, मौसम अच्छा है, बहुत गर्मी है और तापमान जाने टेम्परेचर सीवन त्वेंत खराद से लेकर एन अंदर तक खराद तक है।
1: छुपेगी

0: आप ही ठंडी फिजाओं से जा जा।
1: अरे जा जा।

और जा जा जा रे तुझे हम जान गए, कितने पानी में हो फिर भी तुमको पहचान लिया हमने। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और साथ में लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहौन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो एक मिनट बाकी डेढ़ बजने में, आप फाहौन रेडियो पे चून है।

मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इस बार जो गीत हम पेश करने को जा रहे हैं, गाने वाली है लता मंगेशकर और साथ में है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी, और ये गीत खास करके पेश है बारंद्रह के रहने वाली है राफिया रहीम बख्श, जो इस वक्त रेडियो के करीब बैठकर इंटरनेट द्वारा प्रोग्राम को सुनती है। और उस गीत पर हम एक शेर कर पढ़ना चाहती हूँ। चांद चांदनी से होता है, चांद चांदनी से होता है, सितारों से नहीं, प्यार एक से होता है, हजारों से नहीं।

तुम तो प्यार हो सजना और तुम भी प्यार हो सजनी। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत सुन रहे थे। गीत खास करके पेश था बारंद्रह के रहने वाली राफिया रहीम बख्श के वास्ते, जो इंटरनेट द्वारा प्रोग्राम को सुनती है। और इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं उस पर एक शेर शायरी हो जाए। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, लोग चलते हैं कांटों से बचकर, मैं बचाती हूँ फूलों से अपना दामन। जिस कदर खाई है हमने धोखा, अब किसी पर भरोसा नहीं है।

दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई। अभी आपने अलका याग्निक और साथियों से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। गीत जो आप इस बार सुनने को जा रहे हैं, गाने वाला है तलत महमूद और ये गीत खास करके पेश है देन हाँ के रहने वाली फेरा के लिए, और उसके साथ में एक शेर भी हो जाए। वो जो जागते हैं तन्हा रातों में, वो जो जागते हैं तन्हा रातों में किसी के लिए, वही जानता है किसी को खोने का दर्द क्या होता है।

0: अजी शर्माने की क्या बात।
1: अभी आपने तलत महमूद से गीत सुन रहे थे और खास करके गीत पेश था देनहाक के रहने वाली फीरा ठाकुर के वास्ते।

0: सौ बार मालिक ने बनाया होगा और सौ बार भी मिटाया होगा भी। अपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में।
1: ए रही देखिए एक दिन प्यार।

अभी आपने रक्लामा सुन रहे थे, फिर वापस आ गए हूँ। इसमें देखा जाए तो 2:05 व्यतीत हो चुका है। आप फाहों रेडियो पर चून हैं। प्यार एक सागर है, प्यार एक सागर है जहाँ दो दिलों प्रेम से मिलते हैं। चांद सितारे रोशनी देते हैं, वही चमन में फूल खिलते हैं।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अभी आपने मन्ना दे और साथियों से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में, जबकि देखा जाए तो 2:11 मिनट व्यतीत हो चुका है।

0: आशा या जहां भी हो सजना, पलखे बिछा जाऊं, मैं सारी उम्र गवा दूंगा। अभी आपने नया नूर से गीत को सुन रहे थे।
1: कौन रतन? रतन कहां? रतन तो शहर चला गया।
2: रेशमी

अरमान से रखा है बलम तेरी कसम। भी आपने लता मंगेशकर और साथ में मुकेश से गीत सुन रहे थे।

तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमानों का चिता। भी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में।

एक महल हो सपनों का, भी आपने लता मंगेशकर और साथ में पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत को सुना। इसमें देखा जाए तो 2 मिनट बाकी 2:30 बजने में आप फाहून रेडियो पर चून हैं।

मेरे आंखों के निंदिया उड़ा ले गया, तुम्हारे सिवा कौन, तुम्हारे सिवा कौन। लता मंगेशकर और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से आप गीत सुन रहे थे। मेरा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है, 3 बजे के बाद रेडियो फाहुन के अनाउंसर साथी प्रोग्राम को ऑफर लेगा। सभी तो मिलने को मिलते हैं, सभी तो मिलने को मिलते हैं, मगर कहाँ दिल से दिल मिलता है, मोहब्बत करने वाले तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं।

तुम मगर साथ देने का वादा करो, यही मस्त नजरें चुराता रहूं। अभी आपने महेंद्र कपूर से गीत को सुना है। अगला गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलते हैं।

अरे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने किसको खबर कब होगी। अभी आपने लता मंगेशकर और साथियों से गीत को सुना रेडियो फाहन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में।

फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना। भी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत को सुना है।

वैसा फंदा मारे गोरी, दिल दिल पे तेरा प्यार की फांसी पे लटकल जियरा हमार। अभी आपने आशा भोसले और पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे।

दिल संभाले संभलता नहीं, अब मुझे जाने के इजाजत दे दो। इसमें देखा जाए तो 3 मिनट बाकी है 3 बजने में।

और ये जाना पहचाना चून है, इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया खुतमय बीबी साहिबा रहीम बख्श, आपने एक से अभी तक हमारा साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगल को अपना मिलन होगा। तमाम सुनने वालों की खिदमत में खुदा हाफिज, नमस्कार। और हमारे बाद बाकी के प्रोग्राम रेडियो फाहन के दोस्तों के जरिए से आप सुनेंगे। तमाम सुनने वालों की खिदमत में खुदा हाफिज, नमस्कार।

आज हमें जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो। और हम चलते हैं अगला अगला और कौन सॉन्ग की ओर है, और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते, या गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस

धर्रा में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ चटनी सॉन्ग, तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए क्या बात है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग सर तो तैयारियां कर दिया है तो उतार के बिग दिया है दोस्तों डांस कर रहा लेट्स डांस

ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज, ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। आप एक हैप्पी स्टेशन फा हॉन हिंदुस्तानी रेडियो, वह प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ, साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रफी सिंह एंड नादिया सिंह दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

अबकी बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग साउथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा ने रिसीव सेस्ट के बात है जब ये सिनांदेश आया और उसी समय पर एक बार बना था डिस्ट्रिक्ट पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पाटा पाटा।

0: मेरी मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों
1: 6 million ways to die choose one.

हर एक काम जो रिव्यू के सिरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फाह और हिंदुस्तानी रेडियो के डॉक्टर से न्यू सी फो तक 3 से 5 2 8 3 सी पर आपको तार करना है।

दिल की महफिल सजाने लगी, दिल के महफिल सजाने लगी के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

nieuw song met Pishkarunga Dosto, 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है, गाना बोल है मेरे सनम आया है, हम सब मिलकर सुनेंगे.

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप सुन

प्यार है नया एहसास है। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाज़ों में मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इसकी इसकी दीवाना होता है और मस्ताना होता है, खुशी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कड़ एंड गुड़ सिद्धू।

0: जाना नहीं मैनू, नेहा कक्कर आऊ मैं।
1: कक्कर हूं मैं, क्या बात है। हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

Selecta Beats Show Band. Selecta Beats Show Band Bobbling Mashup. New song का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं

स्पेशल आपके लिए, स्पेशल फॉर यू। चटनी शो का प्रोग्राम आप सुनेंगे, स्पेशल फॉर यू। ये चटनी शो का प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूँ, मैं चला जाता हूँ त्रिनिदाद से, और त्रिनिदाद से जाऊँगा गयाना, गयाना से सूरीनाम, वहाँ से वापस आ जाऊँगा हॉलैंड देश। और ये शो का प्रोग्राम का शुरुआत करता है आज शाम का, या आज का प्रोग्राम में जो है, शाम हो या रात हो या दिन हो या सुबह हो कोई बात नहीं, हेमलता दीनदयाल, उन्हीं के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

0: हुआ हुआ क्या सुखा मिलेंगे, आपने सुना त्रिनंद या टोबैको का सॉन्ग, अभी आपने सुने अब की बार ट्रेडिशन का म्यूजिक रिलीजेस सुखा मिक्स ऑफिशियल इंजी रूम आप सुनेंगे और वो है त्रिनंद एंड टोबैको से.
1: I know you not blaming me. Nah.
2: At least it's not my money spent.
1: Yeah, because I made our money.
2: You can call somebody.
1: You see me trying to get a signal.
2: Oh gosh, well you could ask for a ride or something.
3: Who you wanna ask? Who? I can get a ride, please.
4: Only one ride off. Come now, man. Make you now.

नाथ म्यूजिक रिलीज सोका मिक्स सभी आपने सुना। अब की बार वेस्ट इंडियन चटनी म्यूजिक आप सुनेंगे लाइव रिमिक्स बाय मुरई भौजी। और गाना क्या बोल है मुरई भौजी, मुरई भौजी होना चाहिए। और हिमलता दीनदयाल वंस अगेन प्रोग्राम में

0: wanneer de zon je wekt in de ochtend, het licht je doet stralen.
1: जब सो का और मेरेंगे के बात होता है तो सुंदर पोपो को कभी मत भूलना चाहिए दोस्तों. द किंग ऑफ कैलिप्सो त्रिनिदाद टोबैगो का सुंदर पोपो की आवाज में आप एक कैलिप्सो सुनेंगे.

0: त्रिनिदाद एंड टोबैगो का अभी चटनी आपने सुना और वो था द किंग ऑफ सोका मिस्टर सुंदर पोपो के आवाज में। आपकी बार मैं चला जाता हूँ त्रिनिदाद टोबैगो छोड़कर गायना कोर दोस्तों, वहाँ पर भी बहुत चटनी सोका लोग गाया है और रशिका दीनदयाल तैयार हो गया है चटनी ऑन द बीच।
1: Sigaret mana mange, sigaret mana mange.
2: A peaceful song.

0: आश्री माता दिन के बाद दोस्तों हम चला जाते हो आपन बैठक चटनी स्टाइल। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्रिस राम खेलावन के आवाज में
1: तोरी अखिया हो और पतिया

श्री राम खेलावन के आवाज में भी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ हॉलैंडेस, द ईगल्स बॉबलिंग हिट आप सुनेंगे। डीजी विदेश, हर तरफ तेरी जलवा।

तेरी जलवा हर तरफ, तेरी जलवा के बाद दोस्तों आप जानते जहां सोको मेरेंगे चलता है वहां भी बिगी पोको चाहिए, तो आई वन एसबोम ये सरनाम जिस मेरे गांव में रहता है दोस्तों, रहता था, तो उन्हीं की आवाज में आप सुनेंगे बिगी स्मार्ट स्टोरी।

कला न जाने ऊंची नीच कला न जाने जान सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा प्यार की पैगाम।

बड़ा बड़ा खबर आज है सूरीनाम देश के और अन्य देश के और देशों के समाचार हम आप लोग को आज रोस्तक से सुनाएंगे।

है हमारी जनता। अब देखो भैया सूरीनाम में नवा रखे रिंग तो तुलो जाने एक बड़ी सोई गए है और उस ब्लाइफ मार मेंज हीर दार तखान बनूम और आप लोग जानो भैया एगो एगो अरे भैया पास्टर है मैये तुलो जानो ये हुई मैये है का बोले एगो पास्टर है तो एक के सभन मांगे है रखे रिंग रखेरिंग फिनिश यानी कि एनपीएस के अने रुसलांत के और एनडीपी के रखेरिंग गर्गरी रुसलांत और जीमोन एक के बनुम करी से मैये के इस्राएल के अम्बाजादर तो एकर बारे में वही के क्वालिसी पड़ता है और फ्रैक्सी लेदर सेल्फ एनपीएस के वो है जेरल पावी रेजो और ब्रोंटो सुबह हार्जो पेयल के बोले सबन बहुत फरपास है कि रखेरिंग जोन है बोले हैगा ऑन डांस बोले हैगा एंकल यारन पार यार खलीने इला पालास्टाइन के एरकेन करे से जैसे को देश और बोले तो इसे पका करे हैं जाए के इसराइल में बिशप स्टीफ मेयर के बरूम करी से हुआ रेसी देरेंद अंबासादर फॉर सूरीनाम से फॉर द स्टेट इसराइल। तो मलाई पावीरो बोले है भैया पावीरे जो बोले है गा बस लेटन हैंडलिंग इसराइल के तीखन ओवर द पालस्टाइनन फॉलकोमन इंस्ट्रेशन में द नॉर्मन एंड वार्ड फॉर सूरीनाम एक कर मारे में मेल्विन बाउफा बैटलांस साके और इंटरनेशनल हैंडल के बोले है दैट सूरीनाम बस्तांद बिलैटरल रिलेशन विद इसराइल फॉल्स हेम हीव द लैंड सेल्फ प्रोजेक्टन geïnitieerd en die nog lopend zijn voor Israël willen hier projecten krijgen willen hem lukken contacten hebben te willen kiezen naar krab te willen gaan landbouw willen landbouw initiatieven projecten gezondheidszorg willen campus van universiteit voor vloeien van uitbestaande relatie doen hij Israël kerbaar in bouwvaar willen hebben volgens de minister in het standpunt van Suriname uit 2011 onveranderd willen hem lukken hebben en PR-fractieleider Pauwie Regio stel dat Suriname een vreedzame samenleving is waar alle etnische en religieuze groepen al eeuwen met elkaar in harmonie leven. Het vervreemdt hem daarom dat de regering jij Israël mee of jij ambassade dure he meeke. Bolle in maart van dit jaar heeft het parlement van het land een wet lezen dat doodstraf doet gelden uitsluiten voor mensen door het etnische groepen, religieuze geloofvoertuigen, de Palestijnen, dat is volkomen in strijd met de normen en waarden van ons land Suriname. Bolle volgens NPS heeft Suriname pas 95 meer. Ego bolle na de apartheid was afgeschaft, diplomatieke relaties Zuid-Amerika, Zuid-Afrika aangeknoopt. Ik er waren 80.000 mensen zijn omgebracht in Israël. Deze stad van Surinaamse regering roept daarom vraagtekens bij hem. Bolle Israël ze bolle ze contacten naar chahi. Hamlo ambassade hoe naar chahi ga. Omlo tulunjane hega. Israël Palestijnen ke utraf de musulman ke hua dagi se. Aur tulunjano ho so mohardo. U bhi musulman hai. Aur ek wa malai bhi musulman hai. To use natuurlijk voor de moslims heeft ze opgenomen. Ki Palestijnen ke dagi se इतराद हेर और बोले हम लोग के यहाँ के अंबासादर जाएगा हुआ इसराइल में और बाउफा बोले है इसराइल के बोले के तरह प्रोजेक्ट अब नीज सूरीनाम में चले है बोले हम लोग के खाद नू साखल खेगा NDP parlement EB Jones verdedigde het besluit van de regering en stelde dat intussen 13 CARICOM landen diplomatieke banden hebben met Israël. Aan de andere kant houden CARICOM landen inclusief Suriname zich aan de VN-resolutie van de staakt te vuren en het recht van een Palestina naar bestaan. 11 van de landen hebben de VN-resolutie met betrekking tot Gaza en Palestina ook ondersteund, mensen. To EB Jones bhi bole hai chahega ambassador ho dhare ke to
एकर बारे में, भैया हम जाएला सूरीनाम में, बाप रे बाप सिपाहियन हुआ का करे है दादा रे दादा। बड़ी आफत के बाद तीन गो अंदर ऑफिसर, एगो देई पे भैया अख्तन डरते, एगो ए हाफिरन डरते और देई टू फिरते। इस भैया मदरक्स के बारे में फरदोफन मिदल भैया एंड देई नेमर अन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन आन को अंदर ऑफिसर स्कोटुरा भाई द द्रीताल अलैन ब्रिगेडियर रहा फन पुलिस इस से फोर खलेन एम सिपाही अबू सब के अंदर सुक करे नार्कोटिका के द de afstemming met de openbare ministers en de verdachte politieambtenaren, hangende onderzoek door de politie. Kijk daar hem tje laai bolila. Kun Suriname het heer sipahi ke bhaiya biswaas na hai. Dekhyo mahanga mahanga auto chalawe bhaiya. Puchhiye kitna salaris hai. To us salaris se admi khali ghar chalai sake. To tu kahan pehle baate itna dher paisa. Aur jai ke baki hua pe bhaiya. Glat hai. Glat सिपाही इसे अंडरसुक ना करे ब्लास्टिंग दीज और सिपाही लोग के अब देख पकड़ी से तीन गो जो दृक्ष इधर से उधर कारबार करत रहा और तुलन जाने कराका में जब सुनियो भैया ते कराका में बोले दृक्ष जरे हैगा उची युवा बारा ऑन ऑन बन बन एक विश्वास करे लायक ना भैया। हाँ अब जाइए भैया सूरीनाम से फरीनिंग फन इकोनॉमिस्ट सा इकोनॉमिस्ट इन सूरीनाम का नाम फेस उसे बोलेगा बखराइब द बसलेसिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन और टाइटन सूरीनाम की बोले हैगा वेरल्ट वेट बोले बकेंट हैगा कि इंटरनेट इंटरनेट दिस दोन स्टारलिंग के geen dienst in Suriname te laten aanbieden. Volgens beschikbare informatie is Suriname de enige land in Zuid-Amerika waar deze niet wordt toegelaten. Bhaiya, of festival Devi Prasad bole hega IBC me bole hega moeilijk na samajh pawe u ki kahe ke Starlink volgens hem voordelen kan bieden voor de overheid en afgelegen gebieden. Telecom providers zouden daardoor niet over al dure infrastructuur hoeven aan te leggen. Toen werd in een maatje oraal ik hier zeggen, ja, vers gebaren mee. लेकिन न्यूज ज्यादा है। तब देखो भैया हम जाए साउथ कोरिया में, भैया हुआ के वो पुराना मिनिस्टर 25 बरिस के जहल पाई से साउथ कोरिया के बातचीत है 25 बरिस के भैया फॉर रोल इन अ नो टू स्टन के बारे में वो रोल ओके रहा तो एक 25 यार के बोले जोनी परसिस करी से काम तो हुआ के पुराना मिनिस्टर यूसुशी के साउथ कोरिया के ओका नाम बा पार्क शुंग यही बोले रेख बांग साउथ ने सियोल में 25 बरिस के जहल पाई से रेखतरों के बहुलक बोले फल दूंद अने भवेश पाई से 2024 में के को बड़का रोल खेल रहा है अफकोंदक फान स्थान फान बलेग दोर प्रेसिडेंट यूंग सुक्यूल बोले हैगा अने प्रोबेद में दे नोट मात्रीगले हैं पार्लमेंट buiten spel te zetten. De oppositie met meerderheid in het parlement zou nauwe banden onderhouden met Noord-Korea en alles aandoen om het beleid van de regering te frustreren. Volgens Yoon waren dat voldoende redenen om een militaire noodstand uit te roepen. Deze duurde slechts enkele uren. Ondanks een blokkade door de leger bereikte parlementsleden toch de vergaderzaal waar ze resolutie aannamen om de staat van beleg terug te draaien. Mensen, बोले श्रेष्ठ रोल में तो स्थान ते इसे प्रकीर्ण के बांची थे भैया जहाँ पे तू जाने एगो बैठे एक वक्त ऐसे करे एक वक्त ऐसे करे है तो ये बात है हमारे जनता साउथ कोरिया के बारे में। तो हमारे प्यारे प्यारे मौसी लोन भैया और यानी कि मैं के बारे में तो अभी आप लोग को हम बता चुका है कि एक बारे में दीबतेर सब करे है पार्लियामेंट में कि एक के सब दुई मिला ना मांगे है और दरस आदमी मांगे है कि पालस्तीन के अने इसराइल के अम्बासादर बने के
और यह मैय के बारे में भैया बड़ी गर्मी है हाँ कोउदर रोड इन स्टेट्स मेर यूरोपी से लंदन फरवीक एक्सट्रीम है तो गर्मी बहुत है नीदरलैंड बोले फॉर आउस नो स्प्राके इस फन कोउद और आये यहाँ पे नीदरलैंड में कोराये हैं और आये हैं वर्ड इन स्टेट्स यूरोपी से लंदन कोउद रोड अफगेवन वीक एन एक्सट्रीम है तो इटालिय में भैया बोले हैं बोले इन मेडस 15 स्टेट 15 शहर में सेवन कोउद रोड करी से रोमन में मिलान से इन वर्ड्स अपगरूबन बोले तेजस वर्मस्ट दाग दिलें बिनन तब लाइफन भीतर घर में रहिए और बोले जइयो कूलिंग खोजियो Frankrijk bole hega gaat gebukt onder de hittegolf 54 departementen is code rood aangekondigd. Niet eerder waren dat er zoveel of veel plekken die 40 graden hoe via Frankrijk mee. Zouden Franse scholen schooljon hega zouden go bole hitte se ban hoe je heen. Fransen gaan zwemmen ter verkoeling. Sinds het weekend zijn zo'n 20 mensen verdronken. Ook mensen na de nieuwe Paulé via de paard. Adim na jiye dusue me na ha liye aur bole france autoriteit was kyu kare hai ki jiyo pade pawre tana buriyo ja risiko badka hai for the uitdroging france kernreactor werd tijdelijk uitgeschakeld omdat het koelwater warm was geworden kernreactor jene bole ke ban kari se bole paniya garmai ja hai ook in belgie is een hitte crisis mensen bole dichterbij is extreme hitte belgie ke बोले मंगलवार के वो कृषि सेंटर में खोली सेगा कैसे अनपक करेगा रात के बोले के कूलर रहे 25 ग्राद और बोले दैट इट अ सोंडलक वार्म मींस मित्र लोग की तदीन मिलके के बोले फनवीक द हिट इज दार कोड ओरेंज गिवन और नीदरलैंड में afgelopen woensdag कोड ओरेंज रहा द वार्स्क्यूइंग ड्यूट इन ईदर गेवाल tot in donderdag maar de kans is groot dat dit wordt verlengd mensen itra गर्मी है यूरोपा में और आप लोग भी पानी पियो में खिलवाड़ ना करिए दोस्तों हम भी यहाँ पर पानी ठंडा पानी लेकर बैठा हुआ है कि हम भी तरी से अफकूल हुई हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता तो आप लोग जानो हैं रुसलान भैया उक्रेन के नाक में भैया नाक में और कदक काबुल है नाक में इतना प्रॉब्लम करी से जब देखो तो एके उड़ावे ओके उड़ावे है बम से दागे ड्रोन से दागे है अब यहाँ उल्टा चीज हो गया भैया उक्रेन अब कितना ड्रोन उड़ावे है और रुसलान के अनफॉल करे भैया राफिनार्द रे दागे तो ई दागे तो ऊ दागे है तो यहाँ पे बताए गए है द्रियन ट्वेंटिक यूनी के बात है और बोले हैगा फर्स्किलन द रीज रुसलान में ओस रुसलान में इज द फेरकोफ ब्रांस्टोफ अन पर्टिकुलरन अन बंधन गलेग ऑफ दी मने विलेंडर lokale autoriteiten voorkomen dat er gehamsterd wordt vanwege Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen en brandstoftekorten. John Rusland etra jabar teel dunia bhar mein export karat raha een van de grootste exportland raha teel ke ab ohi ke desh mein teel na hai bhaiya teel bole hai bahut kamti hai aur bole saban hamster kare omdat Russische raffinaderijen go hega Oekraïne apan drone se dak ook het citrade is en Russische raffinaderijen worden al minder onder vuur geroemen Oekraïense legers en volgens Andriy Melik de permanente vertegenwoordiger Oekraïne bij de Verenigde Natie is 40% van het totale aantal raffinaderijen inmiddels beschadigd te worden hierdoor Rusland raffinaderij capaciteit flink afgenomen doordat Suriname en daardoor sommige complexen meer dan eens worden aangevallen. To itra jabber bhaiya ab to Rusland apan tel aprehi admik na dei pawe he. Daarnaast worden ook aanvoerroutes van brandstof verstoken jahan jahan stelwa saman le ja hai. Ohu ke Oekraïne dage he. Rusland bole he Skir eiland de Krim is de verkoop van brandstof daardoor volledig stilgesteld. Ego Krim me wahan pe Rusland lele raha aur tel kare ohu in de बन हुई है और एक बारे में अन द रेखियो व्लादिमीर
meer ten oosten Moskou mee, krijgen de hulpdiensten, vervoerders en landbouwvoertuigen verlopen voorrang bij de voorkoop van brandstof, meldde governor of telegram. Jonathan Miketi Kare, ook is van TLDWN. Ik ga weer naar jij de zwam. Ja, burgers hebben de oproep gekregen om zo min mogelijk autoritten te maken. Bolle auto kan titelen je. Regering bolle Poetin ge. Bolle ga tel hem lukken na he. Oostelijke Russische regio's is middels sprake van een brandstoftekort. Waaronder in de Kazachstan grenzende regio is de verkoop van banden gelegd. En is het gebruik van jerrycans verboden. Jerrycans met biedt ook het tamage tellen jijke. 10.000 kilometer afstand komen in beeld. Volgens Kremlin woordvoerder John Hega Russische regering. Oliemaatschappijen kebolen om ervoor te zorgen. Die constante aanvoer van brandstof blijft. Hega ondertussen Oekraïne door aanvalken Russische tilpe orgaskele installatie pe waaronder raffinaderijen, bollehega fabrieken, jetra hega exportterminals gewoon door. Oekraïne president Zelensky maakt afgelopen weekend melding van een aanval op de olieraffinaderij in de Russische regio Tumen om zo'n 2000 kilometer afstand van Oekraïne. Volgens president is bij die aanval gebruik gemaakt van een nieuwe type lange afstand drone. Met deze drones komen ook doelen op ruim 10.000 kilometer afstand binnen bereik. Stel ik zeg nou ook een Oekraïne banaisega drone ook op een eigen fabriek van ja op to ultaatje joa hoega rafdat utra de raffinaderij de ha sabke asai dag dag or Oekraïne plata kare he. Oekraïne wil ki militaire druk doen hega bole gepaard gaat met diplomatieke druk die moet Moskou ertoe aanzetten om een einde te maken oorlog bolem ik had karela ki Moskou doen he Rusland ke oorlog wa ook het jij ben karek hamlo se herhaalde melding manda bij de VN. Gebeurt dat niet, dan overweegt Kiev om zijn voorstel voor een wapenstilstand langs het gehele front al ruim een jaar op tafel ligt. Obole Rusland bole namange he double i hem luke manier hega ki hem druk karela ki oorlog wa bunker Oekraïne. Anders gaan we door. De impact van de militaire druk op Oekraïne lijkt ook de Amerikaanse president Donald Trump niet te zijn ontgaan. Vorige week zei dat Rusland een deel van Oekraïne zou moeten sluiten. Voorheen was die boodschap meestal aan Kiev gericht. Toen je baat hamare janta ki ab sab chijon ulta hoe lagal hai. Oekraïne juist aanval kreeg Rusland koeper. En Rusland mee teelol naar hege. Bhaiya bole landbouwers ke voorrang hai. En bole Russische brandstof tekorten als gevolg van Oekraïnse aanvallen breiden zich uit mensen. To hamare janta aur aage ko hum apna program ko lekar और चलते हैं बढ़ाते हैं वो तो और देखो भैया मार्टिन लूथर किंग वेक में पारा क्रीक में हुआ के बुड़की बन है भैया वेक लंग अफकसलोटन बुड़की हुआ के पारा क्रीक के और बन है भैया एगो बड़का बुड़की और बोलेगा बेतोन ब्रिक ओवर द पारा क्रीक और जो मार्टिन लूथर किंग वेक में है अंडर हाउस हुआ हुए है और बोले बुड़की बन है बोले स्वार ट्रांसपोर्ट gelden aparte verkeersmaatregelen op bolle Oesepke Broekina bolle hega gebruik maken Bouterse highwayke oeke oerastuas toketje heen jijke tego lamba route en miloke marike pariga hamari janta. To abhi aap log ko aur aage ke baatcheet hum batayenge हमारे जनता की और करप्शन के बारे में भैया एंटी करप्शन कमिटी दुद्रेंगन अप्रूव आन फी वी verplichtingen. तो बोली जॉनी ये क्या होता है तो ये होता है कि एंटी करप्शन वेट जोने को हैगा 13 अप्रैल 2026 में ड्रेगन अप्रूव करी हैगा कि जो पब्लिक फंक्शनरीसन हैगा बोले हैगा दी ऑफ ग्राउंड फॉर द एंटी करप्शन वेट verplicht zijn een verklaring van inkomsten van vermogen van IEV in te dienen bolle het jetra lantieke admi he functionaris
boleh verplicht hega anti korupsi wesse boleh ego verklaring afleg kareke ki kahan pe tu ipaison pahile he fee fee ke matlab verklaring van inkomsten en vermogen boleh hega de ACC wees erop dat de door PG vastgestelde hersteltermijn afloopt tot 16 augustus en pahile te lukken tjahin sep ke melde karde weke or ACC is het groot belang van de een verplichting, hun wettelijke verplichtingen alsnog nakomen. Deze gevolgen kunnen onder meer bestaan een strafrechtelijke voldoening de ik er maar niet mee verplicht is. Want ke augustus de pijle sopke verklaar kereke ki kahan kahan pe or tu isab chi yon pijle baate anti-corruptie wet ke baare mee te ye to accha baat hai bhaiya ma sab kuch wahan bikao hai bhai je to ke paisa hai te ee vetwa bhi tur ho jai ee to hamara Surinam ke vishwas na rahegi hamari janta ab ek aurat bhaiya nikeryanan ke baat hai nikeri mein dui barani mein jhagda bhail hai bhai jhagda bhail hai sanichar ke raat ke aur nasan raha auratiya bas apan ghar mein apne aage laga de isna andamiya bhaiya auratiya laga de ise aur ye baatchit hue hai शनिवार के रात में निकेरी के बात है भैया एगो निखन फिर तक यार के और बोले द खसिन फोन द फॉलीडिक इन द फ्लमन एन फॉलीडिक इन फ्लमन वास ऑपगनोमन और एक बार अपनी केरी के सिपाही गइल है और कई फने को स्कॉल स्ट्रैट है तो वहां पे ये चीज भईले भैया आगे लगल है और बतावे दुई परानी के झगड़ा में घर में आगे लगे दुई परनिया जे मोई हो जाए तब बैठ के मुड़ी पे हाथ धर के और यो की का बात भईले हम का कडल्ली बाटी और एगो रमिया के जरगे पीठी में किसी भाई अपन फुरतोई में ली गए है मुगरा में इस संतरे में और बताई गई है या खतई कर इस्लाह तो फरक्लार देते ही कनु वो पुलिसी दैट एम एन द ब्रांच ऑफ हेवन आंखस्कोकन और बोले एगो औरत के हिया भैया का किया बानल है और एक औरत की फोटो है जो अगिया लगाई से भाई अपन घर में अपने आगे लगाई के और तमाशा देखियो दारू पी के दोनों प्राणी तो ये बात बड़का रूफ ऊपर फाल भइल है हमारे जनता सनिचर के संजा के भइले बैरखन सूप वेख में बैरखन सूप वेख में एगो जबरदस्त रूफ भइल है जहां पे देर तक दैसन एसएडी सब लीगे को ब्राउन फीस पे भाए फरदख्तन दार में मकतन तो द पुलिस बोले है बरूफिंग भाई सर तीन भैया दिन वे के बोले हैगा रेड लंग समेशन ऑटो हाथ स्कोडर सास ऑफ से स्कोट लिखन op een gegeven moment werd zijn voertuig ingehaald door een bromfiets met daarop twee personen de ego niet dhire op een auto leek jaat raha en ego skouder tas tangen raha jo maa otra paisa raha en chitte me ke ego bromfiets inhaal kari se en bromfiets wa eke inhaal karke eke tas wa leke peel bhagal bhaiya door de plotsingel akki schrok de automobilis waardoor de verdachten en inslaagden de tas met het geldbedrag buiten te maken Na de beroving gingen de bromfietser en zijn medepassagiers er met hoge snelheid vandoor. Beide verdachten droegen hier integrale valhelmen, waardoor hun identiteit niet kon worden vastgemaakt. Als je pahai ik ek hoja ma tu otope baate bhaiya, chalat otoma se isab ghiet lees te kahen otu wa leke dhaurai le. Haori isab amaan te.

सुरीनाम का न्यूज और कुछ और देशों का समाचार हम आप लोग के बराबर देखो सिपाही भैया सेट एक्स्ट्रा पर्सनल इन बे अफसलोतन ब्रुक पारा क्रीक में एक्स्ट्रा जो ब्रुक किया रहा हुआ एक्स्ट्रा सिपाही धरी से गा बोले तैने जो स्पूत ओफिल बोले हूं तो इनके इंस्पेक्टर लोन हुआ दम ब्रुक के गई ले हैं और बोले पुलिस पोस एवर अफकर एलकार वा नो उदक बेतस्तान उजन ब्रुक किया बन करी से और सिपाही लोन हुआ पे भैया सुरीनाम में ड्रग्स ड्रग्स के पकड़े

अब हम जाई डायरेक्ट अने का बोले मट्टिया में, अब मट्टी अट्टी में उ जाई के अपन का बोले सब कारबार करके, अब बोले अब हम फ्राई हो गए, अब हम जाई तरी एगो कैसीनो हो जाई भैया। तो एगो भैया गईल है मजे में एगो कैसीनो में, और ये कैसीनो में गईल है तो हुआ खेलत खेलत खेलत खेलत एगो बदराह जीतल है, एगो खल बदराह जीतल है, और जे जीतल है तो बड़ा खुशियाली में रमिया रहा भाई, खूब खुशियाली में रहा। न तुलक तू जिले बाटे को 50 बरिस के आदमी बा, तो ये रमिया बड़ा मोह से गईल है। तो बोले अब हम जाई तरी कुछ खाओ ली हम, तो गईल है एक दरी कुछ खा तो उतरा भैया, तो हुआ भेटान है एगो औरत के, और वो औरतिया हुए पे भैया हौसल करत रहा, जाने कौन हौसल हुआ तो हमें हौसल हौसल कर भैया रमिया के फसाई से। तो रमिया के बोले अच्छा ठीक है सब कुछ मोई हुई गया, रमिया दारू वाली भी पी से भाए। तो अब एक ले के गए है अपन दूसरा कमुआ करे, तुरंत समझ गए ना पलटन तिवारी वैक में एगो पेंशन है, और गईल है पेंशनवा में अदमिया, टैक्सी शोफेर है टैक्सी शोफेरवा 50 बरिस के अदमिया के, और वो औरतिया के ले गए एगो पेंशन में पलटन तिवारी वैक में। तब दोनों में भीतर रहा थे ये नमिया इतना गढ़ू काम करी से भाई की सूत गए वही पेंशन में सूद गए, वही पेंशन में ही भैया सूद गए और लगाए बे रहा। बस ये औरतिया का करी से जितना पैसा ही जीते फीते रहा, एकर पजामा टांगल रहा भाई जेस पजामा रहा, और एगो ताश रहा सब वही में ओकर का बोले है गई तेज कार्त रहा, और खेल बदराख रहा एगो बैगताश में, और दोस्तस कार्त रहा मोबाइल टेलीफोन रहा सोना के केतीरा सब लेके छोड़ी पेल भागल भाई पेल भागल है। तो ये आदमी ये जगल है तो देखे के पजामुए ना है भाई, पजामा मके जितना चीज सब इसे चुरा ले गई औरतिया। तो इस गनमी गल है नानिश करी से, तो स्कूतु गल है पेंशनवा में पलटन तिवारी वैक में, तो के बता इसकी दुई मिला ऐसे आयला ऐसे ऐसे समय पे। तो पेंशन वन वाला सब के कहते ही नंबर हुआ लिखा है कि कौन ओ तो आवे कौन ओ तो जा है। तो कहते ही के मुताबिक तो सिपाही जाई के और टैक्सी शोफेरवा के पकड़ी से वहां टैक्सी शोफेरवा और छोड़िया समवेर करत रहा, और जाई के पकड़ी से गा का बोले हैगा छोड़िया के और टैक्सी शोफेरवा के कहते ही के निंगवा से पाई से भैया, और बतावे एडमिनिस्ट्रेशन फन पेंशन ब्लीक द कहते ही के फन टैक्सी वार मीर फरदाख्तन है ट्रेन फलीत ओवर इन को मेड टैक्सी दी है ट्वीटल एर्डर नार पेंशन हट खबरख द स्पोर लेडर द पुलिस uiteindelijk naar de taxichauffeur tijdens onderzoek wist de politie een deel van de buik terug te vinden mensen auro auro tiake auro ik heb paige maar ik zon nog een keer tia tia abena paise ik er bare me lief voor nog eens bij 52-jarige taxichauffeur auro 25-jarige commerciële sekswerkers zijn aangehouden op verdenking van beroving in een pensioen in de resort Livorno. De twee zouden een man hebben besloten bestolen van onder meer een groot geldbedrag en een mobiele telefoon en ziranen. Toe la tour pe gaila bhaiya kabule gok ver gaila gok kare na bij de kruising van la tourweg en Martin Luther Kingweg mee, waar hij volgens eigen zeggen aanzienlijk geldbedrag won mensen. भैया लतुर फतुर तो हम लोग न जाइला वही बेनालान के जुगा रहा हुई, और वो गए भैया तो कर संगे ई दशा हुआ पे भैल है, यानी कि लतूर पे। अब देखो भैया मुंगो के दो सेंतन मुंगो टापू के दो सेंटर भैया हक कॉमिनी तेर दन बसलौत करे डायरेक्ट बारात में जाएं के, और बोले जब लिख हम लोग के पैसा ना आई भीतर स्कूल के यफ्राउ में इस तलो बोले हम लोग काम पे ना जाबे, और बोले देख शाम लोग को अंदर वे इस बोन बोले वास क्यू करे हैगा, बोले एक्सामन वेरक्सा मीडन ए खफार कॉम एन
eisen dat de regering en het ministerie Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur de openstaande vergoeding uiterlijk deze week betalen. Bolie hebt dan hamloke paisa na die, dan bolie hamlo na jabe, als ze met lerken ke examen ke periode he, of examen bolie na hoi pijt behoor barka hani he,

इसी गिरीश गीत से हम आपको अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। एक घंटा हो चुका दोस्तों, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम। जोनी नंबर वन है हमारा नाम।

और ओ मेरे दिल की चैन सहनाई मेरे दिल को और छुपाती चे परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है। हम चलते हैं अगला गीत की ओर जो है दीजिए रेमिक्स ऑल इन जोन 1964 एंड 1990 और हिंदी जोन फन दीजिए।

0: ऐसी बात थी दब आके चली जाई तो हम जाते ये पर्दा हटाओ ना
1: जरा मुख।

0: पर्दा हटा दो
1: और ये पर्दा हटा दो और ये पर्दा हटाएंगे तो क्या क्या दिखाएंगे। तो चलते हैं बॉलीवुड तख्त सॉन्ग के ओर और रिमिक्स हिंदी ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम यहाँ से और आपको और आगे सुनाते हैं। ये मुख वेल में खान स्विंग स्विंग स्विंग

और जिंदगी एक सफर है और वो है सुहाना, और चाहे कल क्या होगा वो तो देखेगा जमाना। और हम दोस्तों और हम चलते हैं अगला और रीमिक्स सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड मेरा दिल ये हमारा दिल तो सदा पुकारते हैं। लातवे फ्रांस स्विंग

सारा जवाना, और सारा जवाने के बाद तो हम चलते हैं और बिंदिया चमकी है, बिंदिया कब चमते है, छमा चम चम

और बिनिया तो जरूर चमकेगी। और ऐसे तैसे थोड़े चमकते भैया, तो हम चलते हैं एक और गीत की ओर।

और टंडोले भी है। और दोस्तों हम जरूर जलते हैं, हम कहां जलते हैं, महबूबा की ओर। महबूबा क्या करते हैं?

ए दोस्तों, मोफी के नाम थे शोले शोले एन शोले 1975 का सुपर हिट फिल्म थी। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगते हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो सुनते रहो। खनी तेरफान वहां सामा खनी तुख

0: मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। सॉन्ग का नाम है ये पर्दा और हटा कर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना।
1: पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा।

It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, man. और दोस्तों आप जानते हैं, आज नचना जरूर।

0: रहेरी, उसके बाद हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहां चलते हैं, रेडियो फाउंड में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामत हुआ और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: Shot Kerwal on the beat.
0: And beat.

0: तेरी गलियों
1: देते सोनी स्लेख मेंजी
0: होगी
1: मार फना खवालीन मार रीमिक्स रीमिक्स ए रीमिक्स पर्दे में और रहने दो अगर जब पर्दा उठा देंगे तो क्या दिखला देंगे तो दिखा जाए

और मेरी नसीब में तू है कि हम है। रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी।

योगी रमदा योगी के बाद हम और कहां जाते हैं, और कहां जाते हैं। जब किसी से प्यार हो जाता है तो इकरार भी करना चाहिए।

पर प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। और प्यार से कभी कभी डरना मत। वैसे स्टेरिक तो बेंस और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

और छैया छैया चलना, यारे मौसम मौसम मौसम, चाहे श्रीनाम में चाहे यहाँ पर, घाम में मत चलना, धूप में मत चलना।

और छैया छैया के बाद हम चलते हैं। अगर तुम्हारा दिल किसी पे आ गया और किसी ने जो आपको पुकारते हैं तो क्या करना चाहिए, हम बताते हैं क्या करना चाहिए।

यहां से पुकारते हैं कि आ जाना। और अगर आपको प्यार हुआ, दिलदार हुआ किसी परदेसिया से, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए, चाहे आपके परदेसिया यहां हो, डेनहाग में, अमस्टरडम, यूट्रेख्ट, ग्रोनिंगन, पारामारिबो, सरमक्का, निकेरी, जहां भी हो अपने परदेसिया को याद करना, जरूर करना। दिस इज जॉनी नंबर वन प्राइम टाइम।

Oh.

अनीसी अनीसी अनीसी, और उसकी तो आए बाहर और जाने से क्या होगा रे बिग सॉन्ग ओह अरेंजमेंट से। और हो तो पेज कभी किसी को चूम नहीं लेना, किसी बात लेना, किसी बात करना होठों से तो क्या होता है।

और ओठों पे ऐसी बात ही, और वो बात क्या है दबा के चली आई। और उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, और ओ मेरी महबूबा।

में जल्दी रही, क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है। और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहती है।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार माइज मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइटी मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार।

रानी वाला माइकी बुके आशा जी का ये दिल लेकर नजराना का ये सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं कोई जलवा का ओर, और वो है पद्मान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए, मूवी का नाम है दोस्तों।

और अगर तेरी जलवा खुदाई ना होती तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा ना हो। बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों, नुपर मोफी है दोस्तों। तो ये गीत आपको हम सुनाए जाते हैं, आओ सुना जाए।

मोहम्मद रफी, परमात श्री मोहम्मद रफी के साथ साथ मुकेश माई थी मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माई थी मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती से तक का ये हिट सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं ढूंढता हूं किसको, ये आपको तो पता होगा, और हम भी है तुम भी हो। मैती मुकेश गीता दत्त का ये सॉन्ग है मूवी मूवी मूवी, राज कपूर

गीता दत्त लता जी का ये सॉन्ग है और इसमें काम किया है राज कपूर पद्मिनी के साथ हम चलते हैं एक मनोज कुमार और मल्हार सिन्हा का मूवी जिसमें माइती मुकेश भी अपना अपना गीत को गाया है और वो है हरियाली और रात।

फन होम टू हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

खिलते फूलों जैसे लबों पर हंसी हो, ना कोई गम हो ना कोई बेबसी हो, सलामत रहे जिंदगी का यह सफ़र, जहां आप रहें वहां बस खुशी ही खुशी हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान, यानी सपने। सपने हमें क्यों आते हैं और सपनों का मतलब क्या है।

0: आज आपको जिस विषय के बारे में बताऊंगी उसका नाम है शकुन विचार। शकुन यानी जो शगुन भी कहते हैं, शकुन भी कहते हैं, और उसका शुभ लाभ भी है और अशुभ लाभ भी है। शकुन विचार अर्थ, वास्तव में होरा गणित शकुन का मिश्रित रूप ही संहिता शास्त्र है। कालांतर में संहिता में से दो भेद और बताए गए, शकुन और प्रश्न। शकुन का फल विश्वास करने पर ही मिल सकता है। जीव ने पूर्ण जन्म में जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किए हैं, गमन के समय पशु पक्षी उस जीवन के कर्म के पाप को प्रकाशित करते हैं, यही शकुन है। ऐसा नहीं है कि शकुन शास्त्र केवल यात्रा काल तक ही सीमित है। शकुन के अनेक आयाम हैं। घर में भी शकुन हो सकते हैं और ग्राम में भी शकुन हो सकते हैं। जिस प्रकार पेड़ पौधे एक औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि का हर जीव प्रकृति की विचित्रता और विशेषता लिए हुए है। परंतु प्राचीन शास्त्रकारों ने काली चिड़िया, कुत्ता, कौवा, गिदड़ी, इन पांचों को शकुन शास्त्र में रतन की संख्या दी गई है और उन्होंने इन पांचों के सरस्वती, यज्ञ, गरुड़, चंडी और शिवदूती का अधिष्ठात देवता बतलाया गया है। शकुन उस परिणाम का सूचक है जो मनुष्य को निकट भविष्य में प्राप्त होने वाला है। शकुन मनुष्य के लिए देवीय प्रेरणा है जो शुभाशुभ फल के बीज के रूप में प्रस्फुटित होती है। यथार्थ में शकुन शब्द का अर्थ नामकरण पक्षी को अक्षय मानकर ही हुआ है। कुछ आकस्मिक घटनाओं को जो किसी शुभाशुभ घटना की घातक हैं उन्हें ही शकुन कहते हैं। सुनने वालों, ये मैंने आपको शकुन का अर्थ बतलाया है।
1: पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना ये सुरीनाम के महान गायक कलाकार श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, अब सुकून हो तो क्या करें। यात्रा करने वाले व्यक्ति को यदि गमन करते समय कोई अपशकुन हो तो लौटकर हाथ पैर धोकर जल का आचमन करके किसी पीपल, बड़, गुलर अथवा आम के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए और प्राणायाम करते हुए अपने ईश देवता का मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण यात्रा आरंभ करनी चाहिए। यदि दूसरी बार भी विपरीत शकुन हो तो वापस आकर किसी दूध वाले पेड़ के नीचे बैठकर प्राणायाम करते हुए ईश देवता का मंत्र जपना चाहिए और पूर्ण यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। यदि तीसरी बार भी अनिश शकुन दृष्टि गोचर हो तो उस दिन के लिए यात्रा का त्याग कर घर लौट जाना चाहिए। जिस व्यक्ति से घर से निकलते ही कोई शकुन होता है तो शीघ्र ही अपने स्वभाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देता है। गमन करते समय जो शकुन होते हैं, यदि प्रवेश के समय भी वही शकुन हो तो उसके बाद दूसरी बार गमन करते समय भी वही शकुन हो तो बिना विश्राम के ही बहुत शीघ्र बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इसके विपरीत गमन करते समय शुभ और प्रवेश करते समय अशुभ शकुन हो तो दूसरी बार गमन करते समय शुभ शकुन भी कठिनाई से सफलता देते हैं।

चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। शगुन भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ अशकुन और अशुभ शकुन। अब मैं आपको पहले शुभ शकुन के बारे में बतलाऊंगी सुनने वालों। जिस प्रकार अशुभ शकुनों से हानि, असफलता, अधिपतन आदि की संभावना समझी जाती है, उसी प्रकार शुभ शकुनों के विषय में लाभ, सफलता, सौभाग्यवर्धन आदि माना जाता है। कुछ शुभ शकुन तुरद्यानु हसदा हुसन मिले इस्तो की शकुन चंगेरा है। इसका मतलब है सुनने वालों, अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई हंसता हुआ व्यक्ति मिल जाए और इससे अच्छा शगुन और क्या होगा। सौभाग्य चिन्ह पुत्रवती स्त्री, सुंदर स्त्री, कुमारी, स्वस्थ बालक, बनिया, पगड़ीधारी, ब्राह्मण, ज्योतिषी, विद्वान, धोबी, शिक्षक, घोड़ा, तांगा, रथ, गाय, मोर, बैल, भेड़, हिरण, कबूतर, बकरा, सांप, फलों का ढेर, फलों से लदा ठेला गाड़ी, ईख, पुष्प, तंबूल, गीली लकड़ी, दर्पण, नवीन वस्त्र, दूध, दही, दुर्वा, मांस, शराब, घी, पताका, खाद्य सामग्री से भरा बर्तन, दीपक, नगाड़ा, वाद्य, जलयुक्त, कलश, छाता, देव प्रतिमा, शुभ वचन, गोबर, शुभ समाचार, जयघोष, वेद ध्वनि, पुस्तकें, पूजन सामग्री, खिलौने, आनंददायक सामग्री, सुगंधित द्रव्य पदार्थ, खेल, वस्त्राभूषण, श्वेत माल्य सहित, मल या कूड़े आदि से भरा हुआ पात्र लिए स्त्री, गुड़ की भेली लिए हुए स्त्री या पुरुष, नारियल, छुआरे, सुपारी के लिए हुए मिठाई, मधु, धृत पेठा लिए हुए ध्वजा, पताका, पंखा, चावल, पका हुआ अन्न, सरसों, चंदन, शंख, मिट्टी, बिना धुएं की अग्नि, कमल, रतन, पशुओं का समूह, नवीन शाक, श्वेत वर्ण, स्वस्थ वृद्ध पुरुष, ईश्वर भगत, नई भरी हुई रजाई, रंगे हुए वस्त्र लिए या पहने हुए आदमी, सेहरा धारण किए हुए दूल्हा, सांड गर्जन करता हुआ हंसता खेलता बालक, हरे पत्तों की बंदरवाल, हरी धूप, सिंहासन, कपूर, जलती हुई अगरबत्ती, मछली, वीणा, काजल, भुजा, मुर्दे के पीछे ले जाने वाला खाली कलश, राख, लकड़ी, राज, कीट, कपास, खुले हुए बाल, काली वस्तु, लोहा, वृक्ष की छाल, काला तेल, चमड़ा, दाल, विष्ठा, नमक, राजा, वैश्य, भोजन करते हुए, पूजा करते हुए, गांव के बाहर जलती लकड़ी, राख, पत्थर, सन्यासी के वस्त्र, बाल, धान की तुष, हड्डी, मांस। सुनने वालों, ये सब शुभ शकुन है। अगर ये चीज़ें यात्रा करने हम जा रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये सब शुभ शकुन माने जाते हैं।

सुनने वालों, अब आप एक गाने की ओर बढ़ेंगे। गाना सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे शुभ है तो लाभ है तो हानि भी है, वैसे ही अगर शुभ शकुन है तो अशुभ शकुन भी है। तो गीत के बाद मैं आपको बताऊँगी अशुभ शकुन के बारे में। सुनने वालों,

सुनने वालों, जो आप लोगों ने अभी ये गीत सुना वो है सूरीनाम के प्रसिद्ध गायक देसी रघु सिंह जी की आवाज़ में। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, जब आपने शुभ शकुन सुने, अब थोड़े अशुभ शकुन भी हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे चोर, पागल, लपट, सन्यासी, ब्रह्मचारी, रोगी, लंगड़ा, नपुंसक, काना, भिकारी, जटाधारी, क्रोधी, गधा, ऊंट, भैंसा, रुदन की ध्वनि, गर्भवती या विधवा स्त्री, धूर्त, लकड़ी बेचने वाला, नाई, सुनार, लोहार, तेली, चमार, कुम्हार, मोची, शिकारी, अस्त्र शस्त्र, हथकड़ी, अंग फड़काना, ठोकर खाना, बर्तन का गिरना, मुंडे सिर वाला, बिल्ली, बिल्ली का रोना, कुत्ता, कुत्तों का लड़ना, कुत्तों का रोना, कुत्तों का कान फड़काना, बिल्ली का रास्ता काटना, बांझ गाय, काला सर्प, काला पान, कौवा, वानर, तेल से भरा घड़ा, तेल, छाछ, काला नमक, गुड़, झाड़ू, काली बर्तन, हंडिया, रस्सी, छींक, दुर्वचन, रुधन, कूड़ा करकट, दुर्घटना, बाल छाए रहे, बिजली कड़के, दिन में तारे टूटना, मेहतार खाली, डलिया लिए हुए, नौ स्त्रियां या तीन ब्राह्मण, दो वैश्य, एक शूद्र, कोई मनुष्य चिकने वस्त्र पहने हुए, तिलक रहित ब्राह्मण, हिजड़ा या हिजड़ी, केश वहीन, अपंग, नंगा, तेल लगाए हुए रोती स्त्री, शराबी, काला आदमी, काली माला धारण किए हुए आदमी, कपाल, कपाल में खोपड़ी, जलती चिता, कांटेदार वृक्ष, भस्म, पत्थर लाता हुआ, पत्थर पर बैठा हुआ पुरुष, गधे को छोड़कर अन्य प्राणी पर योनि से गमन करें।

सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक गीत सुनाऊंगी और गीत के तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगी शकुन किस प्रकार फल देता है।

सुनने वालों, ये जो भी आपने गीत सुना ये सुरीनाम के मशहूर गायक पंडित स्वामी प्रसाद जी की आवाज़ में था और वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे और बहुत उनके गीत मशहूर हुए सुरीनाम में। और इनकी बहन श्रीमती सम्राजी लक्ष्मण जी भी सुरीनाम और हॉलैंड की जानी मानी गायिका रह चुकी हैं। उन्होंने भी बहुत सारे गीत गाए जो बहुत मशहूर हुए सुनने वालों। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, शकुन किस प्रकार फल देता है। समूह का फल, जो लोग समूह में जा रहे होते हैं उसका विचार समूह के प्रधान व्यक्ति के अनुसार किया जाना चाहिए। शकुन निकट हो, शकुन प्रायः निकट होने पर ही फल देते हैं। बहुत दूरी पर होने वाले शकुन प्रायः फलीभूत नहीं होते। शकुन दाहिने हाथ की ओर, जो शकुन हमारे दाहिने हाथ की तरफ होने पर शुभ रहता है और हमारे दाहिनी ओर की नासा छिद्र से श्वास सूर्य स्वर चल रहा है तो शकुन का शीघ्र ही उत्तम फल मिल जाता है। इसके विपरीत बाईं ओर से स्वर चंद्र स्वर चल रहा हो तो शकुन का फल भी विपरीत मिलता है। नर शकुन, पशु पक्षियों में नर के शकुन को श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्री अथवा नपुंसक होने पर मंद फल मिलता है। विभिन्न दिशाओं में बलवान शुभ, पूर्व में बलवान मोर मोदकी सिंह ध्वनि पित्रा हिरण कुकड़ा कंठ फोड़ा हाथी मुर्गा आदि। दक्षिण में बलवान क्रूर शब्द वाले पशु पक्षी जैसे कौवा रीछ कबूतर उल्लू गिदड़ी हरियल तेलगुरु सियारी पिंगला आदि। सुनने वालों, ये सब पशु पक्षियों के नाम हैं। पश्चिम में बलवान कुकुरी गाय बगुला बिलाव हंस चातक तीतर लोमड़ी खरगोश वादों का बजना कुत्ते की ध्वनि सारस आदि। उत्तर दिशा में बलवान घोड़ा चूहा कोयल नीलकंठ शंख कुटुकू बढ़िया हिरण चातक पुण्य वचन घंटा सिंह की ध्वनि आदि।

मंगल अरु इतवार दिन और शनिचर लीन चरकारज को मिलते हैं सूरज के दिन तीन। तीन दिन सुबह प्रातः उठते समय सूर्य का दायां स्वर चलना चाहिए। उठने से पहले अपनी दाई हथेली को 5 बार चूमकर इससे अपने दाएं अंग को स्पर्श करके सर्वप्रथम उठने के लिए अपना दायां कदम पहले भूमि पर रख कर उठें। बाकी दिनों में चंद्र स्वर बाई हथेली तथा बाएं पांव का प्रयोग करें। यह समृद्धशाली और प्रसन्न रहते रहने का एकमात्र रामबाण है। सुनने वालों, आप तो सब जानते ही होंगे कि जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम से ना उठें, पहले हम अपना दायां पैर आगे रखें, फिर हथेली को चूमें और फिर सारे अपने शरीर को उससे स्पर्श करें। तो ऐसे हमें उठना चाहिए, एकदम भाग कर नहीं उठना चाहिए। नीचे ऊंचे शकुन, निकट और नीचे हुए शकुन क्षेत्र फलदायी, ऊंचे और दूरी पर होने वाले शकुन विलंब से फलित होते हैं। सूखे पेड़ पर शकुन, वही पक्षी यदि सूखे पेड़ पर शकुन देता है तो अपशकुन फलदायक होता है। महल मंदिर पर शकुन, जब महल मंदिर मंगल द्रव्य अथवा किसी रमणीय स्थान पर बैठकर कोई पक्षी शकुन देता हो तो रस, दूध, फल, मधु अथवा पुष्प युक्त वृक्ष पर शकुन देता हो तो शेष फल मिलते हैं। दिन रात्रि के शकुन, दिन के शकुन अपने काल में ऊंचे स्थान पर बैठे हो, रात्रि के शकुन जल के समीप बैठे हो तो बलवान होते हैं।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने जो ये गीत सुना, ये गीत था सूरीनाम के मशहूर गायक श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। नदी के दूसरे किनारे पर शकुन, रति मुक्ति, रोग पीड़ित, त्रासित, झगड़ा और मांस की अभिलाषी, नदी के दूसरे किनारे बैठे पशु पक्षियों के शकुन भी घारे नहीं होते। आठ दिशाओं के 32 भेद, पूर्व और अग्नि कोण के बीच कोषाध्यक्ष, लोहार, तपस्वी, अग्नि कोण तथा दक्षिण, कारीगर, भिक्षु, नंगी स्त्री, दक्षिण तथा नेत्रस्थ, हाथी, गोप, धार्मिक लोग, नेत्र तथा पश्चिम, उधम स्त्री, प्रसिद्ध स्त्री, चोर, पश्चिम तथा वाम।

वैर, कलाल चिड़ी मार हिंसक जीव, बा यव तथा उत्तर विष घातक वाले तथा इंद्रजाल जानने वाले, उत्तर तथा ईशान धनवान ज्योतिषी माली, ईशान तथा पूर्व वैष्णव चरक बौद्ध भिक्षु घोड़ों की रक्षा करने वाला, आठ दिशाओं में राजा राजापुत्र सेनापति धनवान जासूस ब्राह्मण हाथियों के समूह का स्वामी, पूर्वादि चार दिशाओं में क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, पुरुष शब्दवाचक तथा स्त्री संज्ञक, बाईं ओर से शुभ गिदड़ी पातकी कलाकार छछुंदर चपकिया शगरी कोयल तथा पुरुषवाचक पक्षी, दक्षिण में शुभ बंदर छीक मृग मोर शिरकट रोरो मृग बाज, स्त्री संज्ञक नाम लेना दर्शन करना, अग्रभाग में शब्द करते शुभ बकरा मोर कीर्तन, सम्मुख आना अशुभ नेवला नीलकंठ गिरगिट।

जो आपने गीत सुना है, ये गीत श्रीमान दयाराम जी ने और महेंद्र गोदर जी ढोल पे थे, श्रीमान महेंद्र गोदर जी हारमोनियम पे थे, दयाराम भाई। और ये हॉलैंड के इतनी मशहूर जोड़ी कि सब इनको जानते हैं, जैसे राम लक्ष्मण जी की जोड़ी, एक के बिना दूसरा अधूरा था। समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: వక్రతుండా మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభ నిర్విధినం కురుమే దేవా సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహీ పా రహా హూ అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసీ నా కిసీ రూప మే శ్రేష్ఠ హోతా హే ఇసిలియే ఆప్కి శ్రేష్ఠతా కో హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూ ఫాహున్ హిందుస్తానీ రేడియో కే సభీ సున్నే వాలో కో హార్దిక్ సే అభినందన్ కర్తే హువే హమ్ సబ్ ఫిర్ ఉపస్థిత హో గయే స్టూడియో మే ఔర్ స్టూడియో 2 సే జో యే కార్యక్రమ లైవ్ బ్రాడ్కాస్ట్ కియా జా రహా హే తో శాంతా జీ భీ కార్యక్రమ మే సహయోగ్ దే రహే హే ఔర్ శాంతా జీ కే ఓర్ హమ్ సబ్ బఢ్ంగే ఫిర్ రాజేందర్ జీ ఆగే కా సందేశ్ హమ్ సబ్ కో సునానే వాలే హే
1: కోయి రంగ్ నహీ హోతీ మగర్ జబ్ దువా రంగ్ లాతీ హే तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। सुनने वालों, अभी जैसे संजय जी ने कहा तो मैं भी उपस्थित हूँ। मेरी नाम है शांता और स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम इस रात्रि के कार्यक्रम में ज्योति का प्रकाश जो यहाँ से आरंभ हो रही है। तो बढ़ते हैं हमारे राजेंद्र जी के ओर।
2: शांता जी ने बहुत ही अच्छा जो डायलॉग दिया है वो बड़ा मनमोहक है। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को जो इस समय हमारा जो कार्यक्रम सुनते हैं उन तक हम लोग ये खोज के बड़ी हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं वो ढूंढ ढूंढ के ये सब चीज़ें लाते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं। आप सब इन चीज़ों को सुनते हैं। आज का जो विषय है तो आपको बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। बताइए संजय जी, आपका क्या विचार है?
0: बताना क्या है राजेंद्र जी, खुशी की बात है कि आज हम सब फिर इकट्ठे हुए हैं और कार्यक्रम बन रहे हैं। और जैसे कि भी शांता जी ने कहे कि मेरा नाम है शांता तो दुनिया के 188 देशों तल के कार्यक्रम सुना जा सकता है। और हम सब जो अभी आज का संदेश जो है अभी सुनाने वाले हैं, पर राजेंद्र जी
2: जी
0: हर सप्ताह के इस तरह जो हमारे एक गीत है जो हम चलाते हैं अपने सभी सुनने वालों के लिए, उसे क्यों ना हम पहले सुना देते। क्योंकि आज अभी आने से पहले मुझे आए टेलीफोन हमारे बड़ा दीदी लक्ष्मण जी ने टेलीफोन किया। बोले भाई, बोले अभी तो आपको जाना है रेडियो स्टेशन। मैंने बोला बिल्कुल सच। बोले वहाँ जाना है तो घर पे मैंने ला करके पानी का व्यवस्था कर दिया है, आ करके ले जाना क्योंकि गटाई को सींचना है। वहाँ स्टूडियो में हम सब उपस्थित होते हैं और काफ़ी बातचीत होते हैं। तो दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सबको लिए ऐसे ही सोचते हम सबको हौसला बढ़ता है। और राजेंद्र जी
2: जी
0: धीरे धीरे हम सब उस गीत के ओर बढ़े जहाँ हमारा मन अभी धीरे थोड़ा उदास है।
2: हाँ, तो क्यों ना उदासी लोगों के मन के लिए हम कुछ ना
0: बस करें। बस यही बात राजेंद्र
2: चलते हैं।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। बहुत ही सुंदर जो हमारे राम जी करेंगे बेड़ा पार जो भजन चलता है, सब लोग इससे उत्साहित होते हैं। और क्यों ना बेड़ा पार करें राम जी, अब अगर बेड़ा पार सबका होना ही चाहिए। तो आज का जो विषय हमने बताया था वो विषय और जो आगे का विषय है, नौकरी और सेवा दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को पहले समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
1: जरूर, जैसे कि आपने कह दिए हैं कि हमारे विशेषज्ञ लोग जो हमारे लिए यहाँ पर संदेश और विषय को खोज करके रख देते हैं, तो आज के विषय में भी ये है कि ज़रा ये तो बताइए कि नौकरी और सेवा, नौकरी करने से हम ये जानते हैं कि हम वहाँ जाते हैं और शांता जी क्या कहते हैं, खुद मूर्ख कहते हैं ना।
2: हाँ, खुद मूर्ख कहते हैं नौकरी करने के लिए।
1: हाँ, तो वहाँ हम जाते हैं और उससे हमें मिलता है कुछ रुपया और उससे हम अपना जीवन चलाते हैं। पर राजेंद्र जी, इसमें तो कुछ होना चाहिए कि नौकरी और सेवा दोनों का में अंतर है क्या, अभी हम सब उस ओर बढ़ेंगे। पहला ये तो बताइए कि जब कोई नौकरी, शांता जी,
2: हाँ जी,
1: इस अंतर्गत में कुछ और संदेश क्या है नौकरी के अंतर्गत में, कि नौकरी वत फरस्ता है यही रोंदर जिसमें हमें अपना और फरप्लेक्टिंग, यानी कि फरप्लेक्टिंग हिंदी में कैसे बोलिए, यानी कि हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है ना
2: जी,
1: और हम उस पे ध्यान देना पड़ता है, और सेवा हम कहाँ करते हैं।
2: अंतर तो है इसमें, आपने हम यहाँ लिखा भी है और आप भी पूछ रहे हैं, और भी आगे में जाकर राजेंद्र जी बताएगा, और यहाँ पे भी लिखल है, स्पर्श लिखल है नौकरी और सेवा, यानी कि और सेवा इसमें अंतर है। राजेंद्र जी इसमें आप थोड़ा से प्रकाश करो।
0: हाँ, नौकरी और सेवा में क्या अंतर है, इसी बारे में पूरा आज का कार्यक्रम है, तो सुनते हैं। जब कोई नौकर सेठ जी के यहाँ नौकरी करता है तो उसे अपनी योग्यता के अनुसार धन आदि मिलता है, नौकरी में उसे पराधीनता नहीं होती।
1: पराधीनता माने
0: दूसरे का अधीन नहीं है, अपने काम किया पैसा मिला तो वो अपना चला सकता।
1: सही बात,
0: पराधीनता।
1: हाँ जी,
0: सेठ जी के साथ वह अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करता है कि यदि आप मुझे इतना वेतन और ये सुविधाएं देंगे तो मैं आपके यहाँ प्रतिदिन इतने घंटे नौकरी या काम करूँगा। इस प्रकार से नौकर मनुष्य के साथ अनुबंध के आधार पर मनुष्यों की अधीनता से काम करता है।
2: अनुबंध जाने की कॉन्ट्रैक्ट।
0: हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। परंतु जो परोपकार के कार्य किए जाते हैं उनमें मनुष्य के साथ कोई अनुबंध नहीं होता, मनुष्य की पराधीनता नहीं होती बल्कि स्वाधीनता होती है। परोपकार के कार्य स्वेच्छा से किए जाते हैं, यानी जैसे शांता जी रेडियो में काम करती है स्वेच्छा से।
1: स्वेच्छा
0: मतलब अपनी इच्छा से।
1: अच्छा, से इच्छा,
0: कोई आपको जबरदस्ती नहीं कह सकता है, क्योंकि आपको कोई वेतन नहीं दे रहा, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा, तो आपकी इच्छा है काम करने की निशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं।
1: पर राजेंद्र जी ऐसा तो भी नहीं होगा,
2: उसको फ्रीविलर कहते हैं।
1: फ्रीविलर। पर राजेंद्र जी इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: जरूर
1: कहना ये चाहता हूँ कि मैंने समय से पूछा तू किसका है, अमीर या गरीब ना
0: जी,
1: तो समय हंसकर बोला कि जिसने मेरे कद्र की है मैं उसका हूँ। तो समय इसमें अनहेल बलांगरा एक फैक्टर है, सेवा में हम अपना समय दान देते हैं, ऐसा है कि ना। पर इसमें या जैसे कि हम सेवा करते हैं हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखना है कि या नहीं।
0: हाँ, समय के साथ रखना चाहिए।
1: रखना चाहिए ना, तो क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, तो फिर उसके बारे में अभी एक और भी जानकारी हम सब यहाँ और रेडियो द्वारा सुनाने वाले हैं।
0: हाँ जरूर, बढ़ते हैं आगे।
1: और आगे कौन सा गीत,
0: वैष्णो जन तो तेने कहिए।

0: वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णो जन को कहते हैं कि पीर पराई मतलब दूसरों का जो दुख जाने, पीर पराई दूसरों का कौन जाने, पर दुखे उपकार करे, अगर किसके दुख का उपकार कर लिया जाए तो वही व्यक्ति समझ सकता है। बहुत ही सुंदर भजन था और इस भजन को बहुत सारे लोग आज भी और उस समय भी पसंद किया करते हैं। वैष्णो जन तो भगवान के जो जन हैं वो लोगों के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, परोपकार की बात चल रही थी। उनमें मनुष्यों के साथ कोई अनुबंध नहीं होता, मनुष्यों की पराधीनता नहीं होती बल्कि स्वाधीनता होती है। परोपकार के कार्य स्वेच्छा से किए जाते हैं। स्वेच्छा से जो भी लोग परोपकार के कार्य करते हैं, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो या कोई भी हो, उनके कार्यों को सेवा के नाम से बोला जाता है। जैसे किसी चिकित्सालय में बिना वेतन लिए मुफ्त में कार्य करना, धर्मशाला में समय देना, बिना वेतन निश्चित किए वेद प्रचार करना, किसी अनाथालय का सहयोग देना, कुछ गरीब बच्चों की मुफ्त में पढ़ा देना आदि। इस प्रकार से दिन में एक या दो घंटे गृहस्थी लोग भी सेवा कर सकते हैं और बहुत से गृहस्थी लोग सेवा करते भी हैं। संजय जी, आप कुछ सेवा के बारे में बात कर रहे थे।
1: सेवा तो एक ऐसा चीज होता है जिसे हम करें और हम अपना हम सबके जो सेवा करें, ऐसे हम एक ये कहना चाहूँगा कि हम सब ना सिर्फ रेडियो में पर ऐसे मंदिरों आदि और जहाँ सत्संग आदि होते हैं वहाँ पर भी सेवा में लग जाते हैं। और सेवा करने से बोले सेवा करो तो मेवा मिलेगा, शांता ऐसे है कि ना?
2: एकदम से ठीक है।
1: सेवा करो तो मेवा मिलेगा और उसी उसका कोई आशा वैसे नहीं रखना चाहिए ना।
2: और सेवा भी है, ऐसा नहीं कि जैसे आपने कहा कि सिर्फ मंदिर में जाना, फ्रेवेला खर्च वगैरह करना, सेवा भी है ऐसे भी कि आप राह चलते यानी रास्ता चलते कोई व्यक्ति आप जो दीनार है जो सड़क पार करना चाहते हैं सिबरा पात के, वो उसको हिम्मत नहीं है तो उसका हाथ पकड़कर उसका सड़क पार करा देना। ये कोई रास्ता भी ढूंढ रहा है कोई एड्रेस यानी पता, तो ऐसे भी लोग हैं जो जो ये जीपीएस लेकर चलते हैं फिर भी उनको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो जरूर से वो कांटेक्ट खोजते हैं लोगों से बात करने के लिए।
1: शांता जी, ये तो
2: ऐसे वो भी एक निष्काम सेवा है।
1: निष्काम सेवा, पर कभी कभी ऐसा भी होता है।
2: हाँ?
1: ऐसा मैं ये क्योंकि ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में हमें और ये नहीं है कि हमें सब बिल्कुल एकदम बगैर कोई ना हंसे ना कोई कार्य, उसमें हंसी भी आ जाता है कभी काल के। और ऐसा हुआ राजेंद्र जी, मैं
0: जी।
1: एक बार मथुरा गया और वहाँ कृष्ण कुंड को खोज रहे थे। तो वहाँ खोजते खोजते लोग से किसी से पूछ लिया कि भाई किधर है वो कुंड। कुंड बड़ा काफी बड़ा है ना शांता जी?
0: राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है।
1: हाँ, दो है वहाँ ना। तो कृष्ण कुंड में और ये प्रश्न किया तो किसी ने बोला कि हाँ यही सामने है। तो सामने वहाँ का सामने चार किलोमीटर के किलोमीटर, तो मेरा मुंह से निकल गया पर कुतुब मीनार किधर है? बोले यहाँ पास।
0: क्या चीज?
1: कुतुब मीनार। तो क्या वो सेवा था कि वो हमें, वैसे मैं भी गलत प्रश्न भी किए पर उसे क्या कहेंगे राजेंद्र जी?
0: उससे ये कहेंगे कि अगर आप उनसे पूछते कि यहाँ से कितने किलोमीटर पे है तो हो सकता है वो उनको पता हो तो बता देते, लेकिन हो सकता है उनको भी न पता हो इस विषय में पूर्ण रूप से। तो आजकल सबसे अच्छा यही है कि अपना मोबाइल में जीपीएस लगाओ
1: और
0: पता करो, खुद खोज लो तो
1: सही बात, ज्यादा अच्छा है। चलो हम एक और संदेश यहाँ भारत से आए राजेंद्र जी।
0: जी,
1: भारत देश उत्तम नगर से ये आए हैं कि ये है संदेश कि किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है ना? किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा अगर वक्त अच्छा हो तो सब अपना है वरना कोई भी नहीं। ये संदेश जो भारत से हम सबको मिले और जरूर कुछ ना कुछ संदेश हम लोगों ने लाइव रेडियो से सुना देते हैं, पर राजेंद्र जी कार्यक्रम जो आज हमारा है नौकरी और सेवा, इसका अंतर हमें कम से कम हो जाना चाहिए, काफ़ी जानकारी मिलने वाला है अभी। तो दोस्तों आप सुनते रहना, क्योंकि सेवा हम सभी करते हैं, सेवा कैसे किया जाता है उस अंतर्गत में और नौकरी के अंतर्गत में वाते सत्फर्शकेल उसके बीच से, और हम सब अभी और संदेश सुनने वाले हैं। शांता जी आपके अपने पिटारा सा कौन कौन सा सुंदर सुंदर गीत लेकर आए, पहले आप कुछ कहने वाले मेरे ख्याल से, तो हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे फिर आगे और संदेश।
2: गीत तो हमने ऐसे तैयार करके लाई है, तो अभी हमारे सुनने वालों जो है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का वो सभी अभी सुनेगा। हाँ, तो यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं, पर ये बात तो ज़रूर कहूँगी कि जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छा कर्मों की फल मिल रहा है। जिंदगी जब हंसाए ना संजय जी, जिंदगी जब हंसाए तो समझ लेना कि अच्छा कर्मों के फल मिल रहा है।
1: तो हमने भी कुछ अच्छा कर्म किए होंगे तो हम सब यहाँ स्टूडियो में बैठकर भी कभी काल के हंसी मजाक कर लेते हैं।
2: वाकई, और
0: जब हम लोग अपना तो हंसते हैं लेकिन दूसरों को भी हंसी मजाक का कारण बनते हैं। जरूर ही किए होंगे।
2: और जब जिंदगी रुलाए तो समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है।
1: सही बात,
0: वाह
1: वाह, संदेश, क्या संदेश दिया। राजेंद्र जी एक गीत चला देते हैं
0: इस खुशी में।
1: इस खुशी में

0: ईश्वर अल्लाह ये पुकार सुन ले, बहुत ही सुंदर जो गीत था लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ में गाया और इसके सब लोग ही लता मंगेशकर की आवाज़ के तो सभी दीवाने हैं। आगे बढ़ते हैं, सेवा की बात चल रही थी, सेवा के बारे में। सेवा के क्षेत्र में मनुष्यों के साथ अनुबंध और उनकी अधीनता नहीं होती, बल्कि ईश्वर के साथ अनुबंध होता है, यानी जुड़ाव, भगवान के साथ जुड़ाव, और वह सेवक ईश्वर के अधीन होता है। फिर जो सेवा करता है वो भगवान के अधीन हो जाता है। इस सेवा को ईश्वर की नौकरी के नाम से कह सकते हैं, यानी आप भगवान के, भगवान का काम कर रहे हो, भगवान की नौकरी कर रहे हो। परंतु सामाजिक दृष्टि से सेवक स्वाधीनता होता है, लेकिन जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनकी दृष्टि से सेवक अपने अधीन काम करता है। नौकरी का फल मनुष्य धन आदि के रूप में देता है और सेवा का फल ईश्वर देता है। फल तो सेवा का भी फल मिलता है। सेवा के दो फल होते हैं, एक सांसारिक सुख और दूसरा मोक्ष सुख। यानी जो हम लोग नौकरी करते हैं उनको मिलता है पैसा, लेकिन जो हम लोग सेवा करते हैं उनको भगवान उसका फल देता है। और वो फल क्या देता है, ये तो संसार का सुख देगा या तो मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। तो ये ज़्यादा मुझे जो लगता है संजय जी, ये भगवान का काम कार्य जो है वो ज़्यादा उचित लग रहा है।
1: राजेंद्र जी, ये इस पे तो मुझे एक बात ख्याल आ गया कि इंसान ही इंसान के दवा है। कोई सुख देता है तो कोई दुख देता है। तो ऐसा है कि सेवा के माध्यम से हम सब इंसान के, और किस प्रकार से सुख उनका दुख को बांट सकते हैं आदि, इससे हमें क्या मिल सकता है और हमें क्या इसमें किस प्रकार के लक्ष्य रखना चाहिए और कैसे बढ़ सकता है। शांता जी, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है
2: कि इंसान एक दुख देता है और एक सुख पाता है?
1: नहीं, इंसान एक दुख देता है एक सुख पाता नहीं, ऐसे है कि इंसान ही इंसान की दवा है ना?
2: हाँ।
1: और कोई सुख देता है तो कोई दुख देता है, ऐसे होता है। कोई कोई अपने परिवार में देखो तो परिवार में ऐसा हो जाता है कि कोई एक माँ के चार पांच बच्चे हैं तो एक उसमें से दुख देते हैं, दूसरा सुख देता है, और ऐसे सब अपना अपना स्वभाव प्रकट करते हैं। और जिसे सुख और दुख दोनों को प्राप्त करते हैं, तथा कोई जो सुख देने वाले होता है और कोई जो दुख देते हैं। बस आप तो एकदम बिल्कुल शांति हो गया, शांता ने शांति हो गया। राजेंद्र जी,
0: शांता जी की बात हम बता देते हैं, सुख और दुख की बात जो आप कह रहे हैं, सुख परिवार में कोई सुख देता कोई दुख देता, ये भी पिछले कर्मों का आपका फल होता है।
1: ऐसा होता
0: अगर आपका कोई सुख बन के आया है तो मान लो आपने पिछले कर्मों में उनको व्यक्ति को सुख दिया होगा, वो इस जन्म में आपको सुख देने की कृपा कर रहा है।
2: बिल्कुल।
0: और अगर आपने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया होगा या इसी जन्म में, तो आपका वही जन्म में आपको, या पिछले जन्म का भी होता है इस जन्म का भी होता है,
2: तो रुलाएगा,
0: तो वो जरूर आपको रुलाएगा। इसलिए हर समय सबका सुख ही देना चाहिए, दुखी किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो दुख आगे जाके आप पे ही आता है,
2: आप ही पे आएगा। हाँ,
1: ऐसा है। संदेश है सुनने वालों, ये फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश और आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। ज्योति का प्रकाश के ये लक्ष्य यही है कि वाणी को वीणा बनाइए, वाणी को वान मत बनाइए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और बाण बनेगा तो जीवन में होगा महाभारत। शांता, तो महाभारत से बच के रहना, क्योंकि वो एक ऐसा तूफान, एक ऐसा तूफान हो जाता है जिसे कभी काल के और लौटने का रास्ता ही नहीं रह जाता है। तो हमें कैसे बनना है ये तो हम जानते हैं, पर फिर भी हम ज्योति का प्रकाश के माध्यम से ये कोशिश रहते हैं कि हम सब अच्छे अच्छे संदेशों आपके और पास पहुंचा सके, जिसे आप से और जीवन में कोई प्रकार के लाभ उसे उठा सके। राजेंद्र जी, आगे का संदेश क्या है?
0: आगे का संदेश एक
1: पर राजेंद्र जी हाथ उठा दिया, शांता पाछे आपने ख्याल नहीं किया।
0: हाँ, इसके बाद ख्याल करते हैं, एक छोटा सा संदेश है 2 मिनट का, पहले उस संदेश को ले लेते हैं। अहंकार की क्या परिभाषा है?
1: अहंकार,
0: अहंकार
1: माने तो अहंकार जो रावण था?
0: नहीं, अहंकार अपने अंदर ही होता है,
1: अपना अंदर, सभी का।
0: अहंकार परिभाषा क्या है? जैसे मोमबत्ती और अगरबत्ती दो बहनें थी, दोनों एक मंदिर में रहती थी। बड़ी बहन मोमबत्ती हर बार हर बात में अपने बात को गुणवान और अपने फैलते प्रकाश के प्रभाव में सदा अपने को ज्ञानवान समझकर छोटी बहन को नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। अगर सदा मुस्कुराई रही अगरबत्ती सदा मुस्कुराई रहती थी। उस दिन भी हमेशा की तरह पुजारी आया, दोनों को जलाया और किसी कार्यवश मंदिर से बाहर चले गया। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। यह देखकर अगरबत्ती ने नम्रता से अपना मुख खोला, बहन हवा के एक हल्के झोंके ने तुम्हारी प्रकाश को समेट दिया, परंतु इस हवा के वही झोंके ने मेरी सुगंध को और भी चारों ओर बिखेर दिया। यह सुनकर मोमबत्ती को अपने अहंकार पर शर्मिंदा हुई। अहंकार इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है, इसलिए विनम्र बनो, विनम्रता से इंसान की तरक्की का रास्ता होता है।
1: बड़ा सुंदर संदेश दिया आपने राजेंद्र जी। हम सब एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: प्यारा सा सुंदर सा जो हम लोग गीत की बात कर रहे थे, इसके बाद आगे का कार्यक्रम रहेगा।

0: जय राम। तो जब सेवा की बात होती है तो यहाँ सियाराम, जय राम, जय जय राम भी होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि वह सेवा धन सम्मान प्रसिद्धि प्राप्ति आदि उद्देश्य से की गई हो तो उसका फल धन सम्मान प्रसिद्धि आदि में भी मिलता है और तत्काल ईश्वर कुछ आनंद भी देता है। और यदि वह सेवा मोक्ष प्राप्ति की भावना से की गई हो तो उसका फल मोक्ष तो मिलता ही है, साथ ही साथ उस सेवक को भौतिक सुख सुविधाएं भी ईश्वर की तरफ से कर्म फल व्यवस्था से मिलती हैं। जैसे भावना से वह सेवा की जाती हो और उसी प्रकार का फल ईश्वर की व्यवस्था से उस व्यक्ति को मिलता है। जिस भावना से आप सेवा करोगे, आपके मन में जो भावना है, उस भावना समझिला, भावना रहे, भावना का मतलब रहे कि जैसे शांता हमारी यहाँ बहन है, हमारी भावना रहे कि हमारे सिस्टर हैं, आप हमारे ब्रदर जैसे, हमारी भावना ये रहे। और सेवा की भावना रहे कि हमको कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, सेवा की भावना रहे, तो उस वो भावना रहे,
1: तो वो हुआ भावना।
0: हाँ, वो भावना, तो जो भावना रहेगी उसके अनुसार हमको फल मिलेगा। फिर भी इतना अंतर तो अवश्य ही रहता है कि मनुष्य की नौकरी में प्राधीनता और ईश्वर की नौकरी में सेवा में स्वाधीनता ही होती है। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाह रहे थे?
1: नहीं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। राजेंद्र जी, ये तो बात स्पर्श है ना।
0: हाँ,
1: पर समय का सही इस्तेमाल जो इंसान का होता है वही सफलता बनाता है। तो ऐसे लोग कितने समय से अपने निकल करके और अपना यानी सेवा में लगे रहते हैं। मैं ऐसा हुआ कि एक बार इंडिया गए था, वहाँ गोल्डन टेंपल
0: जी,
1: तो हमने वहाँ गए अपने कॉलेज लोग के साथ, कुछ गोरे लोग भी थे, और वहाँ गए तो वहाँ चप्पल देना पड़ता है ना बाहर।
0: हाँ, रखना पड़ता है।
1: हाँ, नहीं पर ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ मंदिरों में, वहाँ एक एक एक स्थान है जहाँ से आपको चप्पल देना चाहिए।
2: अच्छा।
1: तो फिर आप अंदर जा पाएंगे। खबाऊ एक घर।
0: हाँ, वहाँ पे हाँ, उसको बोलते हैं जोड़ा की सेवा, जोड़ा सेवा।
1: तो वहाँ मैंने देखा सेवा का और मतलब क्या है।
0: हाँ।
1: क्योंकि मैंने गए अपने चप्पल लेने को, तो हमारे गोरे भाई लोग को चप्पल मिल गया, पर मेरा चप्पल तो कुछ साफ सुथरा नहीं था, गर्मी महीना था वहाँ, तो कुछ स्टफ आदि ज़्यादा हो जाता ना, गंदी। तो मैंने चप्पल दे दिया था और गया, दर्शन किया गोल्डन टेंपल, चारों ओर से परिक्रमा भी किए, और परिक्रमा करके आए। अब हम वापसी जाने वाले थे तो वहाँ पर अपना चप्पल मांग रहे थे, गया चप्पल लेने को, तो चप्पल उन्होंने बोला, दिखाया कि अभी थोड़ा से टाइम लगेगा। तो मैंने बोला टाइम कैसे लग सकता, औरों को चप्पल मिल गया, मेरा चप्पल अभी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा, बोला ऐसे किया हाथ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने चुपके से घूम के इस ओर पे देखा, तो मैंने देखा कितने महिलाएं, कितने बच्चे, कितने लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, बैठ करके, और चप्पल कोई जब लगाते हैं थोड़ा से उसमें क्या कहते हैं चांदा जी, जो काला करते हैं,
0: पॉलिश।
1: हाँ, तो एक पॉलिश लगाता तो दूसरा वही चप्पल को लेकर के और
0: घिसता
1: करता है, तीसरा एक ही चप्पल पे लगभग 10-12 लोग और काम करते हैं, और आपको मिलता है चमाचम।
0: हाँ।
1: चप्पल, वो मैं भी देख करके घबरा गया, मैंने बोला ये मेरा तो था ही नहीं, चलो अब ले लेता है। पर इतना वो उस सेवा के बारे में कुछ हम सबको और आप कह सकेंगे राजेंद्र जी?
0: सेवा जो गुरुद्वारा में की जाती है वो एकदम

0: गुरुद्वारा कहते हैं उसे ना?
1: हाँ, गुरुद्वारा कहते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, कोई कर्मचारी नहीं होते हैं, सब सेवक होते हैं।
0: सब सेवक,
1: और उनकी सेवा बंटी रहती है। कोई भोजन बनाता है, कोई थाली उठाता है, कोई भोजन परोसता है, कोई सफाई का काम करता है। इस प्रकार से सब प्रकार की सेवा वहाँ पे की जाती है, और वो सेवा ही उनके, वो कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब हैं, वो उन्हीं की सेवा है। और इस प्रकार से सारा काम सेवा का चलता है। जिसमें जिस गुरुद्वारे में आप गए, वो गोल्डन टेम्पल पंजाब में है, और वो बहुत सबसे बड़ा गुरुद्वारा वही है, गोल्डन टेम्पल। वहाँ सबसे ज़्यादा भंडारा उसकी आपने देखा होगा, नीचे भंडारा बहुत बड़ा,
0: बहुत भारी,
1: कई हजार लोग खाना रोज वहाँ
0: हजारों लोग एक दिन में खाना खाते हैं।
1: बहुत बड़ा बड़ा गुरुद्वारा है।
0: तो ये भी एक सेवा के और प्रकार से सेवा के माध्यम से लोग इतना काम कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: और इसी प्रकार से मैंने बस प्रशंसा एक ही पे नहीं करना है, इसी प्रकार से और भी संस्थाएं हैं जो ऐसे सेवा में लगे हुए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, बजरंगी सेवा,
1: बजरंगी सेवा दल।
0: हाँ, बजरंगी सेवा दल। तो ये भी एक दल है जो खूब सेवा में लगे हुए
1: हैं।
0: और इसी प्रकार से हमारे होलम पे ऐसा कोई दल है जो सेवा इस प्रकार से करते हैं? शांता जी, ऐसा तो होगा जरूर।
1: हाँ, बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के सेवा करते हैं।
0: ऐसा तो मुझे पता है कि हमारे ICC जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ भी सेवा के लिए, क्योंकि वहाँ भी आप जा सकते हैं और हिंदी आदि पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, और योगा आदि भी कर सकते हैं।
1: हाँ, कल्चरल सेंटर में सब सेवा,
0: वो सब सेवा के माध्यम
1: जो बगैर किसी पैसा के मिलता है, या जो हम लोग करते हैं वो उन लोगों की सेवा ही है, वो भी सेवा के अंतर्गत ही आता है।
0: भीड़ था इस समय भी होता है। तो शांता जी, आगे का संदेश क्या है? क्यों हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं?
1: हाँ जरूर, क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ा जाए, इसके बाद आगे का संदेश चलाएंगे।